0: शायरी और जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 3 o'clock।
2: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू इंस्पायर FM। We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim.
4: Shuru Allah ke naam se jo bada meherban nihayat rehmwala hai.

जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर के लोगों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूँ, शायद उसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारी लाऊं या आग के मकाम का रास्ता मालूम कर सकूं।

0: ब्रेन होता है ना वो गट में होता है, बिल्कुल इसी तरह बॉडी का भी अपना एक माइंड होता है। और ये बात मुझे बाद में एक्सपीरियंस से भी पता चलती है, एक ज़माने में मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, एलर्जी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्हीं दिनों में मुझे पता चला मेरे किसी बहुत ही अजीज़ की डेथ हो गई। तो वो डेथ का जब मैंने सुना तो उसके बाद जो यू नो प्रोसेस करते करते अगले 3-4 दिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज़, वो जो डेथ थी और उससे रिलेटेड जो इमोशंस थे वो मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो 4-5 दिन के बाद मुझे ख्याल आया मेरी एलर्जीज वगैरह ख़त्म हो गई सारी क्योंकि बॉडी ने दिमाग ने फोकस करके मुझे दुख की तरफ लगा दिया और वो जो बीमारी और जो मसाइल चल रहे थे जो किसी चीज़ से भी ठीक नहीं हो रहे थे वो खुद ब खुद ही ठीक हो गया क्योंकि ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ह्यूमन बींग्स जो है ना वो बड़े कमाल किस्म की चीज़ हैं और ये प्लेसिबो इफेक्ट चीज़ों का, और इंसान बहुत कम अपने बारे में जानता है और जैसे जैसे जानता जाता है उसको फिर समझ आएगी, लेकिन वो रोटी कपड़ा मकान और फिर जज्बात और इन मसाइल से ही उसको नहीं निकलने देते या वो खुद ही नहीं निकल पाता बेचारा क्योंकि वो दूसरों को इसी तरह होता हुआ करता हुआ देखता है तो वो समझता है शायद यही ज़िंदगी है यही बंदगी है, तो इसी चक्कर में फिर वो बेचारा अपने आप को जान नहीं पाता।
1: वाकई ये महसूस वाकई हुआ, मतलब इतना अमेजिंग कि आपको महसूस ही नहीं होता कुछ।
0: हाँ जी।
1: आपका तबीयत खराब नहीं होती, आप इतना माइंड आपका उस तरफ होता है फोकस कि आपका आपका मतलब पूरी बॉडी आपकी उस तरफ नहीं होती, बीमार नहीं होती आपकी बॉडी।
0: फिर आपने बचपन से कुछ चीजें सुनी होती हैं, कुछ बातें सुनी होती हैं, कुछ आपकी ख्वाहिशात होती है जब हम जाएंगे तो वहाँ ये देखेंगे ये करेंगे ऐसा होगा, तो ब्रेन बहुत बिजी होता है।
1: और आजादी एक चीज मैंने और महसूस की वहां पर कि वहां पर ना वक्त का अंदाजा नहीं हो रहा था, ये नहीं पता चल रहा था कि ये दिन है ये रात है, मतलब मैं ऑनेस्टली वहां पर 9 days जो थे वो ऐसे गुजरे जैसे 9 minutes सीरियसली,
0: क्योंकि बिजी बहुत थे ना, आना था खाना था खाना था फिर जाना था फिर इबादत करनी थी उसमें थकना था फिर चूर होके सोना था फिर सुबह उठ के वही चीज़ करनी थी, तो इस चीज़ के बीच में जो आपका क्लॉक होता है ना रेगुलर जब आप घर में काम करते हैं दिन की आपकी रूटीन होती है उसमें बहुत सारे आपने रिचुअल्स करने होते हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जब आप उस तरह दिन को देख रहे होते हैं तो दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा होता क्योंकि एक रूटीन को आपने बार बार करना होता है, वहाँ एक नई चीज़ होती है और वो कुछ काम होते हैं कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आपने वहाँ के पूरे करने होते हैं और उस हिसाब से फिर आपका फोकस होता है, थकावट भी उसी हिसाब से होती है, नई जगह होती है नया मुकाम होता है नए जज्बात होते हैं, तो इस चक्कर में फिर आप थोड़ा सा ध्यान जो है वो आपका बट जाता है।
1: लेकिन आजादी इतने सारे लोग रात दिन वहाँ पर तवाफ एक सेकेंड नहीं रुकता
0: जी हाँ
1: एक सेकेंड इतने सारे लोग,
0: जब आपने रब ने जब कोई चीज़ किसी के ज़िम्मे लगा दी हो और फिर उसके काम करने वाले ऐसे कमाल इंसान हो और जब किसी के दिल को किसी की मोहब्बत किसी की अकीदत किसी की चाह जो है जब दिल को और इंसान को पकड़ लेती है तो फिर ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना जो दुनिया में होता रहता है ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। हर आदमी वक्त निकाल के उसके अंदर की जो फीलिंग है जो उसके इनर कॉलिंग है, अंदर से तो सबको पता है रूह को तो सब कुछ पता है, ये वादा उला में हर बात रूह ने तो मानी है और गवाही दी है तो उसको तो पता है फिर उसने किस तरफ जाना है, और वहाँ पर जब उसको वो कोई चीज़ उसको इतनी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ रूहानी तौर पे तो वो तो फिर उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। और फिर जो लोग आपने देखा होगा जो भी कितने ही लोग होंगे जो सोचेंगे मैं ज़िंदगी में शायद एक उमरा करूँ या एक हज करूँ, वो फिर पता नहीं इतनी गर्मी में भी जाते हैं वो आके कहते भी हैं बड़ा मुश्किल बड़ी तकलीफ थी बड़ा कोई ये था वो था, वो फिर तैयार हो जाते हैं
1: राइट।
0: ये बस ये चीज़ ही ऐसी है जो चीज़ भी नेचुरल होती है ना सिर्फ वही चीज़ जो काम भी नेचुरल होता है वही काम आप तकलीफ हो उसमें परेशानी हो जितनी भी उसमें कठिन रहा हो आप बार बार वो काम करना चाहते हैं बिकॉज वो एक सच्चा ट्रूथ का काम है आपका रूह उसकी तरफ खींचता है, ये मैंने नोट किया ज़िंदगी में
1: जी।
0: और बाकियों को बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन वो आपको नहीं मुश्किल लगता, और लोग सोचते हैं ये क्यों कर रहे हैं ये क्यों कर रही हैं, कर तो लिया है लेकिन वो फिर बार बार जाना चाहते हैं वो बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं उस चीज़ को, तो बस ये होता है जब ये चीज़ की सच्चे होने की और आपकी जो रूह की जो आवाज़ है उसकी हकीकत जो है बयान करती हैं तमाम चीज़ें।
1: जी जी बिल्कुल सही। और बस मैं जो है और आप कैसे हैं सब आपके लिसनर्स के?
0: लिसनर्स बड़े अच्छे हैं, हमने बीच में से शो वगैरह कम किए और उसके बाद अभी खैर हम बहुत सारे कोहोस्ट उस्मान जी और सजीला जी और बहुत सारे मेहरबान आपकी जो है वो स्टार्ट जो शुरू में आपकी कमी है वो पूरी करते रहते हैं और हम शो को लेकर रवान दवा हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता।
1: आपने वैसे जो अभी पूरा बयान किया है ना उमरा, आपने किया है उमरा, आप कैसे बता रहे हैं सब?
0: कई
1: तो
0: चीजें जो होती है ना जरूरी नहीं है कि वो आप करें तो आपको पता हो, बस आपको पता

0: बताने
1: लेकिन
0: वाला
1: आप एग्जैक्टली वही बता रहे हैं जैसे मैंने महसूस किया है वहां के, जिस्म नहीं थकता, रूह आपकी हाई होती है, फिर आप, हाउ डू यू नो,
0: बिकॉज
1: कैसे पता आपको?
0: हर चीज़ का लॉजिकल एक आंसर होता है ना, हर चीज़ का मकसद है कोई, हर चीज़ खामखा कोई भी चीज़ नहीं होती। सो जो कुछ भी होता है जब आप उसको जांचने लगते हैं, जब आप एक मकसद अपनी ज़िंदगी का बनाते हैं कि मुझको जानना है, मुझको चीज़ों की हकीकत जाननी है, मुझको जिस्म की हकीकत जाननी है, मुझको रूह की हकीकत जाननी है, मुझको एक्सपीरियंस की हकीकत जाननी है, मुझको इंसानों की हकीकत जाननी है, मुझको अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी स्ट्रेंथ्स और जो अपनी लाचारियाँ हैं और जो अपनी कमालात हैं, इनको जानने की कोशिश करनी है, बाकी लोगों पर ध्यान देना है, ये क्यों हमें ये चीज़ें होती हैं, ये हमारे साथ ये चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, एहसास क्या चीज़ है, इन चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, इन चीज़ों को अपनी बेहतरी के लिए, आसानी के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इनको दूसरों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप गिरा खोल देते हैं, जब आप इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, आप अपने जहन को जब खोल देते हैं, जब ये किसी किस्म की ज़ातियात से बाहर निकल आता है, ये जज्बात से बाहर निकल आता है, बीमार किस्म की जज्बातियत से, तो फिर आप किसी के एक्सपीरियंस को भी फील कर सकते हैं, आप किसी भी इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जब आप कनेक्ट किसी इंसान के साथ कर सकते हैं, तो जो कुछ उन पे गुजरती है या गुजरी है उसको फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म, आप ये समझें कि आप करके तो उसको आप अल्फाज में बयान कर सकते हैं,
1: जी,
0: ऐसे करके।
1: बिल्कुल सही,
0: और जब हम करके आएंगे,
1: ब्यूटीफुल.
0: जैसे अभी हम यूरोप गए थे तो बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने बताई थी, बड़ा मज़ा आया लोगों को। फिर इंशाल्लाह जब बुलावा आएगा, तो जब हम जाएंगे, तो फिर जो कुछ भी वहाँ पे
1: इंशाल्लाह.
0: होता है, तो फिर उसको हो सकता है मुमताज़ मुफ्ती की तरह जाएं और कुछ भी ना हो, और वो जो पत्थर मारते रहते हैं ना वो जो गीटियाँ मारते हैं, वो आगे से वापस भी मार सकता है हमको कि भाई तुम भी इनके साथ, तुम भी वापस मिलने मिले हो, आप भी गीटियाँ मारने के चक्कर सारे पूठे काम करके, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं,
1: नहीं
0: बहुत सारा कुछ होता है ज़िंदगी में। बट उम्मीद करते हैं जब वो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस होगा तो उसको भी कोई बयान कर पाएंगे।
1: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल. तो बस, और क्या कहते हैं, आपके क्लिप्स वगैरह भी बहुत अच्छे आपके आते रहते हैं, उससे हम
0: हाँ जी,
1: कनेक्ट करते हैं.
0: नई सेटिंग में, नई लाइटिंग में, नए कलर में, नए बैकग्राउंड में हमने जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो पहुंचा आपको।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा. बहुत बहुत अच्छा. उससे जो है वो नई नई, हर उसमें एक मैसेज होता है और एक नई बात होती है उसमें, जो है ना, सीखने के लिए बहुत कुछ होता है
0: ये आप लोग जब
1: आपके,
0: उसमें ये सीख
1: माशाल्लाह.
0: रहे होते हैं, मैं ये सीख रहा होता हूँ कि जब इतनी ज़्यादा लाइट्स आपकी आंखों पे पड़ रही हो, तो आपने अपनी आंखों को क्यों, उसको ऐसे जो बंद क्यों नहीं करना, स्क्विंट क्यों नहीं ये कैसे आपने बेहतर से बेहतर देनी है कि आप आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, अगले बंदे को की तरफ देख रहे हैं और आप उसी से बात कर रहे हैं, हम अभी इन चीज़ों के बीच में, हमारी तगोदो इन चीज़ों तक पहुंची।
1: अरे, कैमरे तो अब आप तो हॉलीवुड कर लिया हमने, अब आप कैमरे तो खेलते होंगे, आपका
0: वो
1: फ्रेंड
0: हाँ,
1: होगा
0: कैमरा जो है ना, वो एक्टिंग में जो
1: जी.
0: कैमरा है उसमें और लोग भी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन की वजह से आपको शर्म नहीं आती लेकिन जब आप अकेले बैठे होते हैं ना, सामने दीवार की तरफ देख के और कैमरे की तरफ देख के आप बात करें, और एक्टिंग में आपको कैमरे की तरफ नहीं देखना होता, ठीक है, ये एक्टिंग।
1: अच्छा.
0: हाँ जी, आप एक्टिंग में आपने देखा होगा, फिल्म वाले अगर एक्टर आपकी तरफ देखने लग जाए तो आप फिल्म कैसे होगी, वो उसने हमेशा आपने देखा होगा एक्टर उसको अवॉइड करता है, वो कभी भी कैमरे को नहीं देखना होता, यहाँ सिर्फ कैमरे को देखना होता है, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो ऑडियंस को पता लगेगा आप उनसे बात कर रहे हैं।
1: लेकिन आप जो है ना, जैसे हम भी थोड़ी बहुत फेसबुक लाइव की थी, लेकिन आप इतना अच्छा देखते हैं कैमरे को, जैसे लगता है कि आप हमें देख रहे हैं, हम लोग इधर उधर देख लेते
0: वो
1: हैं,
0: नेचुरल
1: वो
0: करने का
1: एग्जैक्ट.
0: ना, वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ती
1: जी
0: है, जहन को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है बार बार कि इस बात को करते हुए इस ध्यान देना है, ध्यान देना है, क्योंकि अगला बंदा डिसकनेक्टेड फील करता है। अगर आप इधर उधर थोड़ी देर के लिए एक आध चीज़ रख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप किसी की तरफ देख कर बात नहीं कर रहे होंगे ना, उसको ये नहीं लगता कि रूह में झांक के बात कर रहे हैं, उसको ये नहीं लगता कि ये मेरे बारे में बात हो रही है, वो समझ रहे ऐसे ही किसी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो लोग अक्सर कहते
1: जी
0: हैं ना, आप मुझसे ही कह रहे हैं, आपको कैसे पता मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप फील कराएं इस चीज़ को अगले बंदे को, कि मैं भी, आप भी, हम भी, ये सब हमारी ज़िंदगी की बातें हैं, ये आपके साथ भी रहो, आपके भी, आप भी कहीं पैदा होते हैं, आपके भी माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, स्कूलिंग होती है, चैलेंजेस होते हैं, आपकी भी ख्वाहिशात होती हैं, आपके भी ख्वाब टूटते हैं, और आपके साथ भी स्ट्रगल्स होती हैं, आपके भी चैलेंजेस होते हैं, फिर आपकी भी विक्ट्रीज होती हैं, और फिर ये सारी जिंदगी, और फिर आप भी जिंदा हुए, आप भी मरेंगे, आप भी बीमार होते हैं, आपको भी तकलीफ़ होती है, आपको भी परेशानी होती है, और यू नो रोज़ की एक ज़िंदगी की स्ट्रगल है, वो तमाम लोगों के साथ होती है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ये सब नहीं होता। तो इसीलिए जो बातें बताई और की जाती हैं वो हमारी बातें हैं, हमारे से रिलेटेड हैं, हमारी ज़िंदगी,
1: जी.
0: हमारी मौत, हमारे मकसद से रिलेटेड है। समझी।
1: तो आजादी जब आपने पहले वो किया था अपना, जो आपने फिल्म की थी, तो उसमें आप बहुत सारे और भी लोग होंगे ना जब आप एक्ट कर रहे होंगे, तो जब आपने पहला सीन किया और फिर आपने दूसरा सीन किया, तो उसमें आपका क्या डिफरेंस था? मतलब पहले सीन में ऑफकोर्स थोड़ा सा आपको हुआ होगा ना, इतने लोगों के सामने एक्टिंग करना, तो वो कैसा, मतलब घबराहट तो हुई होगी, लेकिन फिर आपने इतना कैसे
0: वो कैसे किया का, तो देखें जो प्रेपरेशन होती है ना, जो मेरा उसमें रोल था, जैसे लॉयर का रोल था, अटर्नी का रोल था, मैं अपनी बेटी से मुझको बात करनी थी खाने के टेबल पे, अपनी बेगम से बात करनी थी, और उसमें इंटरेस्ट शो भी करना था, नहीं भी करना था, लाइट भी कॉन्वर्सेशन को रखना था, तो मेरा ज़िंदगी का वो पहला कैमरे के आगे सीन था, ठीक है। और वो लोग समझ रहे थे, और उसके बाद मेरे सामने जेरल्डीन थी जो इतनी फिल्में कर चुकी हैं, मेरे सामने पूर्वी जोशी थी जो कि 15-20 साल से, वो उनकी पूरी फैमिली फिल्मों में काम करती है, वो स्टेज प्लेस पे काम करती हैं, वो कपिल शर्मा के साथ कितने सालों तक शो करती रही, इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट वो भी, और साथ हमारी जो बेटी साहिबा थी जेरल्डीन, वो भी बड़ी मंझी हुई एक्ट्रेस है। तो अब हम वो उनको जो स्क्रीन सबसे, इनसे पहले मैं सिलेक्ट हुआ था अपने रोल के लिए, ये बाद में आए थे, और जेरल्डीन तो बिल्कुल आखिरी दिनों में आई थी। सो उसमें अब वो सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब तो आएंगे तो छा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो मेरे घर में बैठे हुए दो सेल्फ टेप देखी थी सिर्फ, तो सेल्फ टेप में अपने घर में बैठकर किसी से वॉइस रिकॉर्ड कराकर वो वॉइस के बाद मेरे एक्शन देना या रिएक्शन मेरा करना और कैमरे में रिकॉर्ड करना तो बड़ा आसान होता है। आप घर की कंफर्ट में बैठे हैं या अपनी गाड़ी में बैठ के मैंने दो सीन रिकॉर्ड करके भेजे, तो वो इनको इतने अच्छे लगे, उनको लगा कि भाई इनके सामने तो एक्टर्स आएंगे तो ये तो बड़ा कमाल करेंगे। अब मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे तो पता है ना लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या जानता हूँ और मुझे क्या पता है वो चीज़ मैटर करती है, क्योंकि रोल तो मैंने प्ले करना है और एक्टिंग तो मैंने करनी है। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि पहले 5-6 दिन मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं बस होटल में अपना स्विमिंग वगैरह 16वीं मंजिल पर करूँगा और उसके बाद मैं कमरे में आ जाऊंगा, और चार पाँच दिन मुझे मेरा कोई सीन ही नहीं है। तो अब वो जेरल्डीन भी जा रही है अपने सीन करने और उसकी माँ भी जा रही है अपने सीन करने और मैं जा ही नहीं रहा, तो मैंने एक डायरेक्टर को बोला कि भाई, क्लियर बोला मैंने कि मेरा एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये इतनी बड़ी फिल्म है, तो मुझे कम अज़ कम एक दफ़ा शूटिंग होते हुए तो दिखा दो कि शूटिंग कैसे करनी है, ठीक है, कि एक्टिंग होती कैसे है कैमरे के आगे, तो करते कैसे हैं, टेक्स कैसे होते हैं, रीटेक्स कैसे होती हैं, कैमरा रिहर्सल कैसे होती है, और स्पेशली और जो हमने एक आध दफ़ा देखा हुआ था वो टोटली और पाकिस्तान की बात और होती है, यहाँ पर कैसे करेंगे, आपका माइंड जानना चाहता है ना, तो डिस्टर्ब रहता है, वरना उसको लगता है कि यार ये मैं कैसे करूँगा इतनी बड़ी फिल्म में, मेन मेरा लीड रोल है फिल्म का और मेरे इर्द गिर्द सारी फिल्म और वो बेटी और मेरे इर्द गिर्द रिलेशनशिप के इर्द गिर्द सारी फिल्म घूम रही है, तो मैं कैसे करूँगा। तो खैर उन्होंने पहले तो कहते हैं कि ये अलाउड नहीं है, फिर उनको मैंने जब ज़बरदस्ती कहा, मैंने कहा जी मुझको एक दिन पहले दिखा दें कम से कम क्या होता है, फिर मैं उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि वो एक्टर को बुलाने का ये नहीं होता कि वो आए गाड़ी में और वो सीन देख के चला जाएगा, उसके लिए फिर वो ट्रेलर आपको देते हैं, फिर ट्रेलर मेकअप और ये और वो बड़ा सब कुछ होता है, तो इसलिए उनको बड़ी प्री रिक्विजिट्स हैं जो पूरे करने होते हैं एक्टर के लिए। खैर तो वो फिर मैं जब गया वहाँ पर, तो फिर मैंने वो एक सीन है जिसमें वो कपड़े ख़रीद रही होती है जेरल्डीन के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगले दिन उन्होंने जब मुझे बुलाया तो बजाय इसके अब हम तीन एक्टर, मैं आपको बताऊं फिल्म में काम करना ना वो आसान काम नहीं, ये खाला जी का वेड़ा नहीं है, जो लोग इसीलिए स्टन हो जाते हैं या घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा या बिल्कुल शेल शॉक में, बड़े बड़े एक्टर्स शुरू में आते हैं तो शेल शॉक हो जाते हैं, उसका रीज़न है। अब उनको क्योंकि वो हफ्ते से उनके साथ वो एक्टिंग कर रही थी लेडीज़, तो उनको वो प्रैक्टिस उनकी होगी तो वो कंफर्टेबल हो गए, मेरा पहला दिन था और पहले दिन ही उस दिन मुझे पहली दफ़ा पता चला, आई थॉट कि दो कैमराज होंगे, एक्शन रिएक्शन होगा, वो बोलेंगी जब तो मैं उस वक्त रिएक्शन दे दूंगा तो कैमरा पकड़ लेगा उसको, तो मुझे तो बाद में पता चला कि भाई पहले तो एक कैमरा सिर्फ होगा, ठीक है, एक कैमरा पहले मेरे ऊपर होगा, मैं अपने सारे डायलॉग बोलूंगा, वो दोनों स्क्रीन पे होंगी भी नहीं, फिर जेरल्डीन पे कैमरा, वो जब ठीक हो जाएगा मेरा, जितनी दफ़ा गलत होगा मैं दोबारा करूंगा, फिर जब वो ठीक हो जाएगा फिर जेरल्डीन पे जाएंगे, फिर उसके ऊपर कैमरा होगा, फिर वो ठीक करेगी, जब तक वो ठीक नहीं करती, जहाँ जहाँ गलती करती है वो रीटेक होगा, फिर कैमरा पूर्वी जोशी पे जाएगा और फिर पूर्वी जो हैं वो करेंगी, जब तक वो ठीक नहीं करती वो चीज़ मतलब कन्फर्म नहीं होगी। अब ये तीन बंदे हैं तो एक ऐसा शॉट भी होगा जिसमें ये तो बताते हैं ना कि तीन बंदे टेबल पे बैठे हुए हैं, तो फिर एक और शॉट होगा उसको भी जब तक हम सही नहीं करेंगे, तीनों अपनी अपनी लाइन सही नहीं बोलेंगे, उसमें से भी एक शॉट लेंगे वो, तो इस तरह ये सारे तो अगर वो एक दफा इतना भी कर देते ना कि पहला कैमरा पूर्वी जोशी पे लगा देते और मैं और जेरल्डीन प्रैक्टिस कर लेते, फिर दूसरा उसी दफा जेरल्डीन पे लगा देते या सेकंड पे मेरे पे भी आ जाता तो खैर था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पता नहीं खान साहब क्या करेंगे, वो इतने बेचारे मेरे सेल्फ टेप से, उन्होंने खुद मुझे कहा कि आप इतने अच्छे सेल्फ टेप आपने किए, आप तो कमाल करेंगे, तो वो उन्होंने पहला ही कैमरा मेरे बूथे पे लगा दिया। तो अब जब उन्होंने मेरे पे लगाया तो मैं तो अर्थ हो गया। ओ ये तो मेरे भी आगे, अच्छा अब मैं क्या करूँ, अब मैं हमने मैथड एक्टिंग की एक्टिंग सीखी हुई है, ठीक है। हर चीज़ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बंदा इस तरह शायद बताता नहीं है कोई, या एक्सप्लेन नहीं करते, लोग कहते हैं जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब मैथड एक्टिंग में आपने रियल करना है चीज़ को, एक्टिंग नहीं करनी, बस ये एक्टिंग है कि आपका सीन हुआ, आपने एक्टिंग नहीं करनी। तो जब मैं बैठा सीन करने के लिए, तो अब मैं अगर अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, अपनी बेगम से बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में अगर आप ये बात करें, तो आप क्या मियाँ बीवी से या बेटी से बात करते करते खाना छोड़ देते हैं? आप खाना खाते खाते बात करते हैं ना। तो उन्होंने खाना डाला, अब मैं साथ कांटा चम्मच भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं साथ खा भी रहा हूँ, वो साथ मैं पानी भी पी रहा हूँ, साथ में बातें भी कर रहा हूँ, मुस्कुरा भी रहा हूँ, वो तो चले हो गए। उन्होंने कहा ये क्या है भाई? तो उनको मैंने कहा आई एम ट्राइंग टू मेक इट ओरिजिनल, कहते ओए होए, कहा डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट से द लाइंस। तो मैंने कहा, उन्होंने फिर मुझे नई प्लेट दी, फिर मेरे आगे खाना उन्होंने डाला, मैं क्या ओके इसमें क्या है, तो फिर मैंने लाइनें बोल दी और फर्स्ट सीन ही ओके हो गया। अब मुझे तसल्ली ना हो एज एन आर्टिस्ट के भाई ये तो अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ लाइनें बोलनी, अभी तो मुझे एक्टिंग करनी। तो उन्होंने कहा एक्टिंग की जरूरत नहीं, एक्टिंग होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये तो फिर बहुत आसान है कि एक चीज़ को 15 दफ़ा बोलना है हमने और दूसरे लोगों के साथ रिएक्शन एक्शंस भी आपने करने हैं, तो ये तो फिर मैंने कहा चलें ये तो फिर हो जाएगा।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Want to pray on time? Set a reminder. Make wudu early. And answer the adhan without delay. One prayer on time can become a lifelong habit. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
3: On 105.1 FM, Inspire FM.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that No Comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually. intellectually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses, starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB, or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9am and 3pm from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
13: But
12: it costs £10 per inch.
13: And that's too expensive?
12: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
13: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
14: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
16: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
1: Ye to azad ji to itna mushkil aapne kiya ke matlab koi aapko aap pe hi camera hai aur aap hi sab kuch kar rahe hain warna to ye hota hai na ki baat रिप्लाई हो रही है तो आप जवाब दे रहे हैं तो वो एक अलग होता है लेकिन सिर्फ आप पर ही रख के पूरे एक्सप्रेशन लाना और आप मतलब आप डायरेक्ट भी कर रहे थे उनको कि इस तरह से करना है क्योंकि ये वाकई बड़ी नेचुरल चीज है कि आप खाते हुए तो रुकते थोड़ी हैं
0: लेकिन उनको ऐसा नहीं चाहिए होता ना वो बेसिकली जब आप खाते हैं तो टक टुक की आवाज भी आती है चीजें भी आती है तो वो उसको बड़ी सिंपल करना चाह रहे थे तो कई लोग जो होते हैं ना वो सिंपलिस्टिक तरीके से सीन्स लेते हैं विच इज परफेक्टली फाइन आपको जो डायरेक्टर बोलता है आपने वो करना होता है तो पूरी फिल्म में मुझे सिर्फ डायरेक्टर ने दो दफा इंस्ट्रक्शंस दी उसके अलावा फर्स्ट टेक सेकंड टेक में सारा कुछ हो जाता था उन्होंने बड़ी तारीफ करते थे बड़ा प्यार करते थे और कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा कि ये सीन ठीक नहीं हुआ इसको दोबारा कर दें बल्कि मैं खुद कहता था एक दफा और कर लें एक दफा और कर लें
1: नहीं वो रोल तो बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना कि अंगूठी में नगीने की तरह क्योंकि आप तो थे हैं भी माशाल्लाह से पठान और आपका जो एक कैरेक्टर था वो उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट था बल्कि आप उनको गाइड कर रहे थे किस तरह नहीं ये चीज इस तरह
0: उर्दू के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसकी बहुत सारी जो उर्दू उसमें बोली गई है वो मैंने लिखी है क्योंकि जो पहले उर्दू लिखवाई गई थी वो यहाँ की बॉर्न रेज लेडी से लिखवाई गई थी तो फिर वो उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं आप जनाब और इस तरह की बातें नहीं होती उसके अंदर तो आपने उसको बहुत लाइट सा रखना होता है जैसे घरेलू तरीके में बातचीत होती है आपने देखा होगा जब भी ये पाकिस्तानी फिल्म्स बनाते हैं या पाकिस्तानी फिल्म्स हॉलीवुड में भी बनती हैं या इंडिया में भी बनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की उर्दू और जनाब बोलना शुरू कर देते हैं जनाब वहाँ कोई भी नहीं बोलता वो सिर्फ मजाक के लिए कहते हैं सो एग्जैक्टली बहुत फिर उसकी ट्रांसलेशन भी हमने की फिर उसके बाद मैंने और पूर्वी ने बहुत सारी चेंजेस भी की उसके अंदर लाइनों में और चीज़ों में तो बहुत फिर वहाँ पे एक उर्दू के एक टीचर भी थे वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे आए थे उनसे भी कंसल्ट किया गया था और फिर उनको मैंने ही कहा था कि ये जो लेडी तलाक दे रही हैं ये सीन नहीं हो सकता ये इस्लाम में जायज़ नहीं और ना ही इसको कोई मानेगा लेकिन वो एडमेंट थे कि नहीं वो बीबी से तलाक दिलवानी है तीन वो उसके ऊपर बड़ा उनको उनसे उन्होंने भी कहा कि ये एक मसला खड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि ये है ही नहीं ना रिलीजन के अंदर है
1: exactly.
0: ही खुला ले सकती है लेकिन तलाक नहीं दे सकती. लेकिन वो एडमेंट थे, वो यहीं की बॉर्न एंड रेज्ड, उन्होंने कहा नहीं हम दिला के छोड़ेंगे. हमने कहा दिला दें फिर साढ़ा की फिल्म में तो डायरेक्टर ने और राइटर ने करने ना, वो तो उनका काम है. आप तो सिर्फ
1: सही बात है.
0: आप तो सिर्फ बात बता सकते हैं. और फिर और भी दो चीज़ें थी जो मैंने फिल्म के अंदर मुझे उसमें जो फ्लॉज नज़र आए थे मैंने उनसे ज़रूर बात की थी उसके बारे में कि हमारा काम है जब आपको कोई झोल नज़र आए किसी चीज़ में. तो बेचारे थोड़े से घबराते भी थे. फिर जब मैंने गाना उसमें शुरू किया वो मुझसे पहली सी मोहब्बत, वो आगे से मुझसे डायरेक्टर आई मुझसे पूछती आप सिंगर भी हैं. मैंने कहा नहीं आज से पहले तो नहीं था. तो मैंने कहा जी मैं तो एक्टर भी नहीं था पहले, तो मैं तो रेडियो का बंदा हूँ. तो इस तरह की बहुत सारी उन्होंने फारसी में मुझसे कुछ पूछा, फिर अरेबिक में कुछ बातें हुई, फिर जेरिलिन को मैंने वो रिकॉर्ड करके दी वो जो आखिर में नमाज रिकॉर्ड करके दी ताकि वो जो आखिर में पढ़ती है. इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थी. और ये सीन थोड़े से चेंज भी किए गए हैं. पहले पहला सीन जो हमारा था वो अफ्तारी के ऊपर था. तो उसमें अच्छा। मैंने हाँ जी अफ्तारी की दुआ जो है वो मैं रोज़ा इफ्तार कर रहे होते हैं, तो वो था जो बदल दिया गया सीन. इस किस्म की बहुत सारी चेंजेस की गई हैं फिल्म के अंदर. तो आपको जो मिला है इंशाल्लाह किसी दिन अगर हमें डिलीटेड सीन मिले तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी जगह पे एक्टिंग हुई हुई है जो काट दी
1: माशाल्लाह से. आप इस मामले में भी बहुत लकी रहे अजाज़ जी. लकी रही है क्या कि आपने जो सॉरी भाई का प्ले किया था उसमें जो नुमान एजाज साहब इतने सालों एक्सपीरियंस एंड दैट वाज योर फर्स्ट स्टेज प्ले जो आपने एक्ट किया था.
0: नहीं मैं उससे पहले उज्ज्वला गिलानी जो कि उनसे भी सीनियर हैं.
1: तो यस
0: क्या क्या हमने तीन काम किए और वो तीन काम इतने सीनियर और इतने कमाल लोगों के साथ किए जो कि लेजेंड्स हैं अपने अपने. तो उनके साथ काम करने से जो एक्सपीरियंस आपका 10-15-20 साल में होना था ना वो तीन चार एक्सपीरियंसेस में ही हो गया. तो ये बड़ा फ़ायदा होता है. आप जब भी काम करें जो टॉप ऑफ द लिस्ट बंदा हो ना उसके साथ आपको काम करना चाहिए ताकि उसमें से बहुत सारी लर्निंग हो सकती है आपकी जो वैसे नहीं हो सकती.
1: जी बिल्कुल.
0: खुश रहिए, हमारे साथ रहिए, मेहरबान कदरदान. और भी लोग हैं हमारे साथ. नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर किक स्टार्टिंग द शो. और उससे हमें हाला याद आ गई बड़े दिनों के बाद. रेडियो आज़ाद यू ऑन द एयर.
17: जी सलामकुम.
0: जी वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं?
17: बिल्कुल मजे में. अभी
0: बोर तो नहीं किया हमने और अर्शन जी ने आपको? हम दोनों ने मिलके बोर तो नहीं किया आपको?
17: नहीं मैं सुन रही थी.
0: जी
17: तो मैं ये कहूंगी कि जो आप लोगों ने रेडियो शो शुरू किए वो मैं बेसिकली मैं बता दूं कि मैं ऑडिटरी पर्सन हूँ और मैं अपनी बुक्स भी घंटों सुन सकती हूँ. तो मुझे आई एम अ लिसनर ज्यादा. तो मुझे मजा ये आता है कि अच्छा कंटेंट और अच्छा बोलने वाला हो या अच्छी बुक हो तो मतलब यू एंजॉय. लेकिन जब से फेसबुक और यूट्यूब और डिफरेंट चैनल्स हैं आप लोग चले गए हैं उस पे विजुअल पे. ये बताएं कि करते वक्त मैं ये कहूँगी एनर्जी डिवाइड हो जाती है.
0: हाँ जी.
17: विजुअल में और ऑडिटरी में और दूसरी चीजों में भी
0: बहुत मुश्किल.
17: डू यू थिंक कि यू जस्टिफाई विद ऑडियो एंड विजुअल एट द सेम टाइम और कुछ चीजें विजुअल खा जाती हैं? जो आप हमसे बातें करते थे शुरू के प्रोग्राम्स में तो वो बिल्कुल ही फोकस होता था कि हम सिर्फ लिसनिंग पे फोकस कर रहे हैं.
0: जी
17: अब इस वक्त जो है आप लोगों के कई महल हैं कि वहां पे आपको देखना है कमरा साफ है, लाइट सही है, साउंड सिस्टम तो चलो उसके साथ है लेकिन द अटेंशन इज डिवाइडेड. दूसरा ये बताएं कि इंसानी नेचर में हमारी जिंदगी खुद ड्रामा है. एक तरह से देखा जाए इट्स ऑन गोइंग ड्रामा फॉर 1800-1900 ईयर्स. इसके बावजूद हम सब दूसरे ड्रामे देखने और उसका मजा लेने या उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं. वॉट इज दैट कीड़ा?
0: ये सवाल बहुत ही अच्छा है. मैं थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन पहले कर दूं. क्वेश्चन आपका ये कि हमारी अपनी ज़िंदगी में इतने ड्रामे होते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ लर्निंग हमारी हो रही होती है उन चीज़ों के बारे में, तो फिर हम दूसरे जो ड्रामे हैं जो टीवी के ड्रामे हैं जो बाकी दुनिया के जो ड्रामे हो रहे हैं उसमें हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है वो, और ये कीड़ा क्यों है कि हमें हर एक की ज़िंदगी में और बाकी लोगों की ज़िंदगी के जो ड्रामे इतने शौक से हम देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग का काम है ना, अगर आप पीछे जाएँ इंसान के बारे में जब आप सोचने लगते हैं ना, तो अगर आप किताब खोलते हैं रब की तो उसमें आपको पता चलेगा कि रब ने आपको बहुत सारी कहानियाँ हमसे हज़ारों साल पहले की जो कौमें थी उनकी भी कहानियाँ सुनाई. और उनके बारे में हमें बताया, क्योंकि 3, 4, 5, 10 हज़ार साल पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं थी हमारे पास कि इस तरह हमें डायरेक्ट उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आती। जैसे ज़ुल्करनैन के ज़माने के बारे में बात की गई है, इस तरह और बहुत सारी बातें की गई हैं। तो इंसान कहानियों में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसके अंदर रब ने एक बहुत सारी एबिलिटीज़ के साथ एक इंक्विजिटिव रखी, इंक्विजिटिवनेस रखी है। इंक्विजिटिव होने की वजह से उसके अंदर एक इन बॉर्न बाय डिफ़ॉल्ट क्यूरियोसिटी जो है वो इंस्टॉल्ड है। अब उस क्यूरियोसिटी के वो इसलिए है कि हम अपने बारे में खोजें, अपने बारे में जानें, दुनिया के बारे में जानें। तारीख को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उससे हम कोई नतीजा अखज़ करें, उससे हम लेसन लर्न के साथ आगे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर सकें, बार बार वो गलतियां ना करें। दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के साथ उनकी कहानियों से इबरत भी हासिल कर सकते हैं, सबक भी हासिल कर सकते हैं और अपनी डगर भी हम जो है वो मुतय्यन कर सकते हैं कि अपना रास्ता जो है वो किस तरफ होगा। इसलिए इंसान को इनक्विजिटिवनेस जो है वो उसकी ज़ात के अंदर क्यूरियोसिटी डाली गई है। हमने क्या किया, हमने क्योंकि हर चीज़ को हम नीच तरीके से सोचते हैं, जैसे हम रब जो है वो लिमिटलेस है, लेकिन हमने क्या, क्योंकि हमारे जहन की जो हमारी जो सोच है वो बहुत लिमिटेड है, वो हमारी सोच नीच है, तो हमने किया कि रब के कॉन्सेप्ट को नीच बना दिया कि रब सिर्फ मेरा है या मेरे मसलक से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका है या मेरी सोच से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका है, बाकियों का नहीं है और मैं ही जो हूँ वो आला वरफा हूँ और मैं ही जन्नत में जाऊँगा। तो ये हमने ये इस तरह की सोच से रब अनलिमिटेड को और लिमिटलेस को लिमिटेड कर दिया ताकि हम उसका अहाता कर सकें। बिल्कुल इसी तरह हमारी ये जो दूसरी चीज़ें हैं जो ड्रामे जो ज़िंदगी में है, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमें जब एक्टिंग स्कूल में थे, हम मेथड एक्टिंग जब हम सीखने गए हॉलीवुड में, तो उन्होंने पहली 2-4 क्लासेस में हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम की बात बताई। उन्होंने कहा कि जो लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में ड्रामा ना हो, वो स्क्रीन पर ड्रामा करें। अगर उनकी अपनी ज़िंदगी में ड्रामा होगा और बहुत ड्रामे होंगे तो फिर वो एक्टिंग पर फोकस नहीं कर सकेंगे। तो एक्टर की लाइफ में ड्रामा कम से कम होना चाहिए, वो बोरिंग होनी चाहिए या अनइवेंटफुल भी हो सकती है, लेकिन उस जो स्क्रीन के ऊपर जो उसने ड्रामा करना है उसकी जो प्रेपरेशन या उसका जो फोकस है वो वहाँ पे होना चाहिए। तो एक ही चीज़ को बार बार देखने से आप बार बार एक ही चीज़ सीखेंगे और वो टाइम ज़ाया करने की चीज़ है। तो जो आपको जो क्वेश्चन है, दूसरों की लाइफ में तब आपको इंटरेस्ट होता है जब आपकी अपनी पर्सनल कोई लाइफ नहीं होती है। आप गाड़ी चलाते हैं, आप कितना बैक व्यू मिरर में देखते हैं? कम से कम जब आपको ज़रूरत होती है, जब आप साइड चेंज करने लगते हैं या छोटी मोटी कोई चीज़ होती है या पीछे का ट्रैफिक आपको किसी कभी कभी कभी आप बैक व्यू मिरर में देखते हैं। ज़्यादातर आप आगे देख के गाड़ी चलाते हैं या राइट लेफ्ट में भी थोड़ा बहुत आप देखते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, वो भी तब, वरना आप सीधा आगे की तरफ। ज़िंदगी भी इसी तरह है कि आप रेट्रोस्पेक्ट में चीज़ों को, पास्ट में चीज़ों को तब देखते हैं कि आपने क्या सीखा था, क्या समझा था। राइट लेफ्ट आप तब देखते हैं जब आप अपनी अलाइनमेंट सीधी कर रहे होते हैं और आप प्लान कर रहे होते हैं कि आगे जो ट्रैफिक है मुझे उसके हिसाब से गाड़ी की रफ्तार क्या रखनी चाहिए और मुझे किधर गाड़ी को लेके जाना है और किधर नहीं लेके जाना। जैसे ही आगे कोई ट्रक या बड़ी चीज़ आती है आप हमेशा उसके राइट या लेफ्ट जाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज इंसान का जहन जो है वो देखना चाहता है आगे क्या है, क्योंकि जब आपको नज़र आना बंद हो जाता है तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, डायरेक्शन गुम हो जाती है। इसकी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं मैं, कभी शावर लेते हुए आप आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जब थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा आपको टोटली नॉर्थ जो है वो और है, आपका मुँह ही किसी और तरफ होगा एक दो मिनट में, आप सब भूल जाएंगे क्योंकि आँखें बंद करते ही आपकी डायरेक्शन जो है वो गुम जाती है। ठीक है, जैसे पानी कान में पड़ जाए तो क्या होता है, तब भी आपका जो ना बैलेंस आपका ख़राब हो जाता है, बंदा गिरने लगता है, चक्कर आने लगते हैं बंदे को। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी भी हमारी है। तो ड्रामा जो बाकी लोगों की ज़िंदगी में है, ये इर्द गिर्द हो रहा है, उससे आपने सीख लिया फिर आगे बढ़ गए। बार बार एक ही ड्रामा देखना और एक ही तरह के काम करते रहने से फिर आप कुछ नहीं सीखते, बल आप उस ड्रामे का एक हिस्सा बन जाते हैं और वो ड्रामे का जो ना ड्रॉप सीन जो है वो आप खुद ही हो जाते हैं।
17: बिल्कुल,
0: तो ये
17: बिल्कुल।
0: एक पॉइंट था वो ड्रामे वाला। उससे पहले जो आपने जो क्वेश्चन किया था वो भी बहुत अच्छा है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सवाल आपका ये था कि आपने कहा कि जब आप रेडियो पर शो करते थे तो सिर्फ आवाज़ से आप तमाम चीज़ें करते थे और आपका फोकस जो था ना सिर्फ आवाज़ के ऊपर और अपना मैसेज देने के ऊपर होता था, लेकिन अब क्योंकि विजुअल भी हो गया, डिजिटल मीडिया भी हो गया, तो इसमें तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती होंगी। तो इसका जवाब है बाकी लोगों के लिए तो हुई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है जी, क्योंकि मैं जब प्रेजेंट होता हूँ ना तो फिर मैं प्रेजेंट होता हूँ और मैं इर्द गिर्द कुछ नहीं देखना चाहता, कुछ नहीं सोचना चाहता, मैंने क्या पहना हुआ है, मेरे पे लाइट्स पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं बोलता हुआ कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखना चाहता। लेकिन जब एक आगे कैमरा लगा होता है, उस कैमरे वो कैमरा स्क्रीन के मैं मिडिल में बैठा हूँ या नहीं बैठा, लाइट्स प्रॉपर लग रही हैं या नहीं, और ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा कि मैं अच्छा लगूँ। इस बात को भी गौर से सुनिएगा, कैमरे के आगे जब आप बैठते हैं ना, क्योंकि मैंने एक्टिंग पढ़ी है इसलिए मैं आपको बताने की ये जसारत कर रहा हूँ कि कैमरा है क्या चीज़ और वो क्यों हर बंदा कहता है कि जी वो कहते हैं ना पिक्चर इज़ वर्थ थाउजेंड वर्ड्स, वो एक तस्वीर जो है वो आपकी बहुत सारी बातें जो आप शायद हज़ार अल्फाज यूज़ करके बताएं वो आपकी एक तस्वीर दे सकती है। बिल्कुल इसी तरह कैमरा जो है ना, वो तस्वीर तो छोटी चीज़ है, कैमरा एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप जब आँख नहीं मिला पाते या जब आप ऑथेंटिक नहीं होते या जब आप फिल्म में आपने देखा होगा जब आप एक्टिंग नहीं कर पाते तो वो और छोटी से छोटी चीज़ कैमरा पकड़ लेता है, ठीक है जी। तो इसलिए जब आप कैमरे के आगे बैठे होते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और दूसरा बंदा जो आपको देख रहा है उसके हिसाब से आपने चीज़ों को बैलेंस में रखना है। अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं तो आपको स्क्रीन में दरमियान में होना चाहिए, माइक आपके सामने होना चाहिए, लाइट जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कहीं कोई चीज़ गलत, अगर कोई शेडो भी आएगा तो बार बार बंदे का वहाँ पे जहन जाएगा। आपके चेहरे के ऊपर अगर कोई चीज़ चमक रही है माथे, जो कि पसीना कभी कभी आ जाता है, उसको भी डैब करके हटाना पड़ता है, वरना अगर कोई चीज़ बहुत चमक रही है तो काम की बात सुनते सुनते अगर उनका जहन जो है वो आपकी माथे की चमक पे गया तो वो बार बार उसी को देखते रहेंगे। वो जो माइक पेंस नहीं था उसको मक्खी बैठ गई थी तो हर बंदे ने सारी उस कोई बात किसी ने नहीं सुनी, बस मक्खी के ऊपर सारा तबसरा था। इसी तरह जो आपके बाल हैं, जो आपकी शक्ल इस वक्त लग रही है, जैसे आपने कपड़ा जो आपने पहना हुआ है, ये सब चीज़ों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉइंट कोई पुट अक्रॉस करना चाहते हैं या कोई रीज़न एंड लॉजिक देना चाहते हैं किसी इंसान को कि वो उसको गौर से सुने, आप कैसे लग रहे हैं कि बजाए वो जो बात की गई है वो उसके दिल को पकड़े, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको पता है स्क्रीन का अटेंशन स्पैन कितना है, YouTube का आपको पता है जो उसके जो व्यूज़ होते हैं वो 3 सेकंड के बाद काउंट होता है, यानी कि लोग 3 सेकंड से पहले ही स्किप कर देते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है स्क्रीन के ऊपर जब आप आएँ तो आपकी आवाज़, आपका अंदाज़ और जो भी आप कहना चाहते हैं उसको पहले 4-5 सेकंड में जो आप कहते हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वरना स्किप कर दिए जाएंगे आप। तो बिल्कुल इसीलिए कैमरा जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके सामने काम करना और उसके तमाम लवाजमात पूरे करने की कोशिश करना। इसीलिए अभी हमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ वेब कैम से हमने कोशिश की आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाने की, बैकग्राउंड यू नो बहुत सारी और चीज़ें, जैसे जैसे हम चीज़ों को जानते जा रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लोगों के साथ हम काम नहीं करते थे शुरू में भी। जितने लोग भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडियंस और यू नो बांग्लादेशी यहाँ पे आते हैं वो सब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई भी शेफ़ नहीं होता रेस्टोरेंट्स के अंदर। सब लोग यहाँ पे आते हैं उनको पता चलता है नान लगाने के बड़े पैसे मिलते हैं, $3,000-4,000, तो फिर वो नान बाई बन जाते हैं, ठीक है जी, जिसको इंग्लिश में सू शेफ़ कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह वो यही काम करता है एक्चुअली। लेकिन बाकी जितने भी लोग इस वक्त रेस्टोरेंट्स में खाना पका रहे हैं सब ने यूट्यूब से सीखा हुआ है, इसमें से कोई पक्का मिसालची जो है ना पिछले जो ज़माने का खाना पकाने वाला जो है ना वो बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह सोच के आपने ये बात को आगे लेके चलना है कि लोग दे कीप लर्निंग अलॉन्ग द वे, ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं और फिर, और कभी कभी हम जब लोगों को ढूंढने निकलते हैं तो सालों लग जाते हैं, हमें काम का बंदा नहीं मिलता, और फिर मुसलसल कोशिश करने के बाद जब आपको बंदे मिलते हैं तो आपको पता चलता है जो काम 2-3 दिन में हो सकता था इसके लिए हमारे 2-3 साल लग गए, लेकिन वो प्रोसेस है इन तमाम चीज़ों का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव भी हो रही हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा रेडियो आज़ाद पे भी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं और अभी भी हमने दुनिया में बाहर निकलने की उस तरह की कोशिश नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, और उसके भी कुछ रीज़न्स थे। लोग जो है ना, ये जो बातें मैं आपसे करता हूँ या रेडियो आज़ाद पे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, इनकी मार्केट वैल्यू दुनिया में उतनी नहीं है जितनी आप समझते हैं, ठीक है। दुनिया में और बहुत कुछ बिकता है, अगर इसकी जगह हम एक बिल्ली रख लेते और बिल्ली को अजीब अजीब तरीके से गुदगुदाते रहते और उसकी वीडियो बनाते तो मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं, और जितनी आप निकम्मी स्टूपिड बातें करते हैं उतने आपको दुनिया में ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। कभी उसको लोग इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादातर लोग मेंटल कैलिबर भी हमारा इतना ही है और इतनी है हमारी अकल और समझ बूझ भी है, ठीक है। क्योंकि जब आप हैवानी हालत में और एक धक्का इनर्शिया के स्टेज में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों तो काम की, अकल की, समझ की बातें जो है ना वो आपको ये बातें आपको लगती हैं जब 30, 32, 35, 40 साल आपकी उम्र हो जाती है ना, और जब आपको पता लगता है कि जो कुछ आपने अपने बारे में सोचा था, जो कुछ दुनिया के बारे में सोचा था, और जो कुछ आपने रब के बारे में और आखिरत के बारे में सोचा था, वो वैसा था ही नहीं, वो कहानी कुछ और है, अब फिर से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी। उसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, उसको बहुत सारे लोग उस वक्त तक बिटर हो चुके होते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो रिएक्शनरी एक लाइफ जीते हैं, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं। आज का क्लिप बड़ा अच्छा था, प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ज़िंदगी के साथ साथ ना, आपने देखा होगा हर बंदा लर्निंग पे बड़ा जोर देता है, लेकिन साथ साथ अनलर्न करना भी चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बच्चे थे तब से लेके जवानी तक और मिडिल एज तक हमने बहुत सारी ऐसी बातें रास्ते में पिक कर ली हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है जी, जो कि हमारे लिए इंजूरियस टू हेल्थ है, मुजरे सेहत है हमारे लिए, ज़हनी सेहत के लिए भी, जिस्मानी सेहत के लिए भी, रिश्तों की सेहत के लिए भी, और ज़िंदगी में जो हमारा मकसद है उसकी सेहत के लिए भी। तो इनको आपने अनलर्न भी करना होता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। अगर आप इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी बेइंतहा मुश्किल हो जाएगी। वो शौहर जो बीवी पर ट्रस्ट नहीं करता, उसकी ज़िंदगी अज़ाब में है। वो बीवी जो शक करती है अपने शौहर पर, वो हर वक्त तकलीफ़ में, उसने खुद अपने आप को आग लगाई हुई है, ठीक है जी। और जो लोग अपने पार्टनर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, जो लोग जिनसे अपने बिजनेस, जो वेंडर्स हैं आपके, उस पे ट्रस्ट नहीं करते, जो एडवर्टाइजर्स हैं आप उनके या वो आपके, उन पे ट्रस्ट नहीं करते, ये सारे का सारा काम ट्रस्ट पे खड़ा है। रब के साथ जो हमारा रिश्ता है, आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं चीज़ों को, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सब एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर खड़ा है। इसीलिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। इंसानों के ऊपर एतमाद करना, आँख खुली रखना, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना, ये बहुत ज़रूरी है। कब तक आप हर वक्त अन्ना नहीं था जो 24 घंटे चुकन्ना रहता था, पता नहीं वो क्या करता रहता था, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कॉर्टिसोल बॉडी में इतना स्क्रीशन उसकी होती है, बंदे को समझ नहीं आता, बंदा फामा हो जाता है, ना उसको नींद आती है ना कुछ। और मैं जितने लोगों की ज़िंदगी देखता हूँ, इतनी अनसर्टनिटी में मर रहे हैं, वो किसी पर वो भरोसा नहीं करते, किसी पर भी। और यकीन करें, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक जिन लोगों को भी देखा है ना, वो किसी पे भरोसा नहीं करते। मैं उन पे कभी भरोसा नहीं करता, कभी भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो जिस चीज़ पे भरोसा करते हैं वो उनकी अपना जहन है, और मैंने उनको हमेशा ज़िंदगी में मार खाते देखा है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर रियली रियली स्टूपिड इन द एक्शंस दैट दे हैव टेकन इन देयर लाइफ। इंसान कभी स्टूपिड नहीं होता, हमारी चॉइसेस स्टूपिड होती हैं, क्योंकि इंसान तो बहुत रिफाइंड बीइंग है, लेकिन हमारी चॉइसेस चीख चीख कर हमें बता रही होती हैं कि हमारी चॉइसेस स्टूपिड है। जिन लोगों को हम चुनते हैं वो हमारी स्टूपिडिटी होती है, जिस एनवायरनमेंट को हम चुनते हैं किसी काम के लिए वो हमारी स्टूपिडिटी होती है। एक सेमो थोर वाली ज़मीन के अंदर आप बीज डाल देते हैं और आप फिर कुदरत के साथ लड़ पड़ते हैं कि भाई मेरा फसल नहीं लगी, मेरे साथ जुल्म हो गया, आपने प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं किए। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कि जो लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, किसी पे भी नहीं, सिर्फ अपने जहन पे ट्रस्ट करके वो चलना चाहते हैं, और उनका जहन कॉन्ड है पहले से, उन्होंने कुछ चीज़ें जो बचपन में उनके साथ हुई हैं उसको अपने साथ आज भी बांध रखा है। जो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता ना, उस पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अच्छा दोस्त पाने की सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब तक आप अच्छे दोस्त की डेफिनेशन को समझेंगे नहीं, अच्छा दोस्त बनने की क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं होंगी, आपको कभी अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, डिज़र्व करनी पड़ती हैं चीज़ें, और अगर आप नहीं डिज़र्व करेंगे ना, तो मिली हुई चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी वक्त के साथ साथ। ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखा, इसीलिए मैं कुछ चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं अपने दोस्तों के, इसीलिए मैं ही अपनी ज़िंदगी में आज तक एक ऐसा बंदा अपने आप को मिला हूँ जो दिल से ये कह सकता है कि मेरे जो 5-6 दोस्त हैं उससे बेहतर मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी, मैं रेडियो पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दुनिया में लोगों को मिलके भी मैं उनको बताता हूँ मेरे दोस्तों ने क्या किया, वो कहते हैं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। और मैं अक्सर जब लोग मुझे गिराने की, तोड़ने की, तकलीफ़ देने की, परेशान करने की कोशिश करते हैं, चाहे फैमिली से करें, चाहे बाहर से करें, चाहे बिजनेस वाले लोग करें, या जिस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में मैं जाता हूँ, लोग ये पूरी कोशिश करते हैं, वो मुझे कभी नहीं तोड़ पाते, एक वजह से सिर्फ, क्योंकि जैसे मेरे दोस्त हैं वो मुझे कभी टूटने नहीं देते, वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 40 साल तक ऐसा नहीं हुआ तो मैं कैसे मान जाऊँ आगे होगा, अगर होगा भी तो एक जाएगा, दो जाएंगे, तीन जाएंगे, चार, सब नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल इसीलिए ये जो रिश्ते हैं इसके ऊपर काम किया होता है, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इंसानों के ऊपर करना पड़ता है जो आप किसी पर नहीं करते। और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन क्या वो खुद ट्रस्ट के काबिल हैं? ये सवाल मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि जब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते तो क्या आप किसी के ट्रस्ट के काबिल हैं? और जवाब अक्सर ना में होता है, क्योंकि जब जब मैंने उन पर ट्रस्ट किया उन लोगों ने अपना काम पूरा नहीं किया, लेकिन उनके पास लॉजिक्स रीजंस सारे पूरे होते हैं। क्योंकि जब आपके पास बहाने, आपने एक दफ़ा अपने जहन को सिर्फ एक चीज़ अगर आप अपने आप में बदल लेना तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आप जब गलती करते हैं ना तो उसके बहाने ना बनाएं, उसकी इलॉजिकल लॉजिक्स ना दें, उसकी जस्टिफिकेशंस ना दें, आप कभी नहीं सीखेंगे, कभी भी नहीं सीखेंगे। क्योंकि जिस जहन को बहाने सूझने लगे और उसने दे एंड ही कुड गेट अवे विद दोज बहानास एक्सक्यूजेस इलॉजिकल लॉजिक्स, वो कभी चीज़ नहीं सीखेगा। इस आदमी को नकल करने की आदत हो जाती है, बूटियाँ बनाने की आदत हो जाती है, किताब रख के पेपर देने की आदत हो जाती है, वो कभी इल्म नहीं हासिल करने की कोशिश करता, उसको पढ़ाई सूझती नहीं है, उसको सवाल याद ही नहीं होते। मैं जानता हूँ लोगों को, मेरे साथ बहुत सारे लोग इसी तरह बड़े हुए हैं, वो तब भी नकल मार रहे थे, वो आज भी नकलें मार रहे हैं दूसरे लोगों की, और कहीं नहीं पहुँचे ज़िंदगी में। ज़िंदगी में फेल हो जाना वो बहुत अच्छा है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपको शर्म आ सकती है, आप गैरत पकड़ सकते हैं, आप जो है वो कुछ उठकर कर सकते हैं। लेकिन अगर नकलें मार के आपको पास होने की आदत हो गई, आप अपनी दोस्ती में भी फेल होंगे, आप अपनी बेगम के सामने, शौहर के सामने भी फेल होंगे, आप अपनी औलाद के सामने भी फेल होंगे, आप अपने पार्टनर्स के सामने भी फेल होंगे, आप रब के सामने भी फेल होंगे। क्योंकि रब इसीलिए कहते हैं ना कि जो हुजूर पाक की कितनी खूबसूरत बात, जो इंसान इंसानों का शुक्रगुजार नहीं वो रब का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में, मुझे खान जी का वो जुमला याद आता है, मैं 6-7 साल का था, उनके पास लेटा हुआ था, मैं कोई बात कर रहा था कि रब से मोहब्बत की हम अक्सर बात करते हैं, रब की मोहब्बत जो है वो कैसे हासिल हो सकती है? तो उन्होंने कहा रब की मोहब्बत का रास्ता जो है ना वो इंसानों के दिलों से होकर गुजरता है, जो इंसान इंसानों के दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता वो रब तक नहीं पहुँच सकता। बहुत छोटे थे हम, वो उस वक्त कोई रूमी की किताब पढ़ रहे थे कोई, या जो उनकी बुक्स होती थी, तो लोगों के दिलों से गुजरते हुए ही ये रास्ता बनता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं अक्सर कहना भी चाहता हूँ, और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे यही बातें कहने के लिए मैं लोगों से नहीं मिलता।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
18: Electric ray navigation sharks and rays have a superpower called electroreception. They have thousands of tiny jelly-filled pores on their snouts called the ampullae of Lorenzini, which allow them to detect the incredibly faint electrical fields generated by the muscles and heartbeats of prey buried in the sand.
19: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
20: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Explore local nature trails and hiking paths, unplugging from the city grid to marvel at Allah's creation while getting an intense leg workout. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
21: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
22: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001234774 court.org.uk.
23: Do you feel at times that you just can't cope anymore? Do you find raising a child in today's society challenging? Join me in my parenting show, where I aim to discuss these challenges of raising our children, ranging from nurturing sentiment to building the leaders of tomorrow. Every Tuesday evening at 7 p.m. live with Sister Navid on Inspire FM or via our Inspire FM Facebook page. The Parenting Show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
24: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Farsi, Imam, Quranic reciter and nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Last time on Akhri Mojza.
4: Inna anzalnahu, main un surton ka hawala de dun jo aapko kam se kam yaad hongi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alf shahr. Abhi tab shuru mein kaha tha humne nazil kiya ise laylatul qadr mein. Hum ka lafz. तो हम हमेशा शुरू से आखिर तक हम ही इस्तेमाल होना चाहिए था। अल्लाह ताला कहते हैं तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नी रब्बिहिम बिइज़्नी ना नहीं हमारी मर्जी से बिइज़्नी रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलअल फजर। कुरान ने बार बार जहां इसका इस्तेमाल किया है फौरन अल्लाह की तौहीद भी वाज़ह कर दी। फौरन एक लफ्ज़ से या एक ताबीर से वो बात सामने दोबारा आ जाती है। सुभान अल्लाह।

0: जी ओके, आपका सवाल है, मैंने बताया था अना मैं है और यहां इन्ना हम है, थोड़ी सी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। तो ये अगर इन्नी होता तो ये मैं होता, ठीक है? जिस तरह उर्दू में है ना, मैं और मुझे और मेरी, तीनों लफ्ज किसके लिए हैं? मेरे लिए है। इसी तरह नखनू ना, वो दोनों हम के लिए हैं, और अना और नी और ई वो मेरे लिए हैं। जब इन्ना आ जाता है तो साथ में इन्ना नखनू नहीं कहते, इन्ना कहते हैं हम के लिए। अगर ये अना होता तो ये इन्ना ना होता, इन्नी होता, इन्नी होता। जी ठीक, बेशक हम। थोड़ी सी ग्रामर, थोड़ी सी तकलीफ थोड़ी सी होगी ग्रामर सीखने से, लेकिन फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, वैसे अरबी होती है, शुरू में तकलीफ होती है फिर ठीक हो जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे जुमले की साख्त के बारे में। या बुनैया अकीम अस्सलात वामुर बिलमारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। मेरे बच्चे, नमाज को कायम कर, अच्छी बात की तरफ तलकीन कर, बुरे काम से रोक, और जो कुछ भी जो कुछ भी तुझे स्ट्राइक करे, जो कुछ भी तेरी तरफ आए, उस पर सब्र कर। वस्बिर अला मा असाबक इन ذلك من عزم الأمور, बेशक ये बहुत यानी अजीमत वाले कामों में से है। अजीमत अरबी में, पता नहीं उर्दू में क्या सही लफ्ज़ होगा, जो कमिटमेंट जो ज़्यादा दिखाता है ना, और हिम्मत दिखाता है, बड़ी हिम्मत वाले कामों में से, इस तरह समझने बात को। इन्ना ذلك من عزم الأمور, यानी ये कोई छोटा काम कारनामा नहीं है, इससे बहुत हिम्मत, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इसी तरह आगे कह दिया लतुबलउन्ना फ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हें तुम्हारी तुम्हारे अमवाल में और तुम्हारी तुम्हारे अपने मामले में बहुत सारे इम्तिहानात दिए जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, और तुम्हें बहुत सारी तकलीफ देने वाली बातें सुनने को मिलेंगी उन लोगों से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, बहुत सारी तकलीफ अजियत देने वाली बातें तुम्हें सुनने को मिलेंगी इसकी। और तस्मउन्ना में है लाजमन, सुनने को मिलेंगी, बेशक सुनने को मिलेंगी। फिर कहा वह इन तस्बिरू व तत्तकू, और अगर तुम फिर भी सब्र करो और तकवे को थामे रखो, फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्म अल-उमूर, तो फिर ये तो बहुत हिम्मत वाले कामों में से है। दोबारा वही ताबीर इस्तेमाल हो रही है ना, लेकिन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा तौकीद है, क्योंकि फ़ा का इजाफा किया गया है पहले से, उसमें भी एक ज़रा कलाम में ज़ोर ज़्यादा आ जाता है। और आप देखोगे पहली में कहा था जो भी मुश्किल आए उस पर सब्र करना, लेकिन यहाँ पर कुछ मजीद बात की है ना, कहा है कि तुम्हें बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, तरह तरह के इम्तिहान लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद कहा सब्र भी नहीं करना, सब्र के साथ क्या करना, साथ तकवा भी थामे रखना। तो फ़ा इन दादालिका मिन अज़्म अल-उमूर, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मजीद ज़ोर के साथ ग्रामर के एतबार से एक तीसरी मरतबा ये ताबीर, ये मुहावरा इस्तेमाल किया गया, वो तीसरा है। वला मन सबरा व गफ़रा फ़इन दादालिका लमिन, और इन दादालिका लमिन अज़्म अल-उमूर, ये तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले कामों में से है। ये जो लाम है ना, इन्ना दालिका ला मिन अज़्मिल उमूर, इसको अरबी में लामुल तौकीद भी कहते हैं, लामुल कसम भी कहते हैं, यानी कसम है कि ये बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले कामों में से है, इसमें कोई शक नहीं। यानी ये जो तीसरी दफ़ा यही मुहावरा इस्तेमाल हुआ सूरत शूरा में, इसमें ज़्यादा ज़ोर है बाकी दोनों की नस्बत। तो सवाल पैदा होता है कि इसमें ज़्यादा ज़ोर क्यों दिया गया, और उनमें ज़्यादा ज़ोर और बनिस्बतन कम ज़ोर उनमें क्यों है। सब्र के दो पहलू हैं यहाँ पर, एक है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है और आपको बर्दाश्त करना है, आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आप जवाबी कार्रवाई करने की आपके पास अभी सलाहियत नहीं है, आपके पास वो कुव्वत नहीं है, ना आपके पास वो इख्तदार है कि आप उसकी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई कर सकें, आपके पास अब क्या चाह रहा है, सब्र, ठीक है। और फिर यहाँ पहली आयत में भी जो कुछ मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए उस पर सब्र करना। अच्छा, पहले इंसिडेंटली ये हमारा मजमून नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ें अहम हैं, ख़ास क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, तो उर्दू में कुछ अल्फाज जो कुरान में भी आते हैं ना, हम उसका गलत मायना ले लेते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मुसीबत है, मुसीबत उर्दू में कोई अच्छी चीज़ के लिए, बुरी चीज़ के लिए कहते हैं, बुरी चीज़ के लिए कहते हैं। अरबी में असाबा सवाब से निकला है, सवाब कहते हैं जब तीर मारो और बिल्कुल सही टारगेट पे जाके लगे ना, वो सवाब है। इसीलिए नई अरबी जबान, जदीद अरबी जबान में भी दो, जिस तरह हम कहते हैं सही और गलत, वो कहते हैं सवाब अम खता, सवाब अम खता, खता गलत के लिए और सवाब सही के लिए। इसाबा कहते हैं जब कोई चीज़ अपने टारगेट पे सही से जाके लगे, तो जब तीर सही टारगेट पे जाके लगता है तो वो मुसीब है, वो तीर मुसीब है। और बहुत सारे तीर, हर इनमें से हर एक तीर अपने अपने टारगेट पे जाकर सही तरीके से लगे अपने हदफ पर तो वो मुसीबा है। जो चीज़ मुझे आकर लगनी थी, जो तजुर्बा मुझे होना था, जिस चीज़ का मुझे सामना करना था, वो बिल्कुल सही टारगेट पर आई है, उसी ने आना था। और ये इसाबा अरबी में सिर्फ बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए भी इस्तेमाल होता है। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, हमारे ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे हमारे खाते में लिखा है, हमारे खिलाफ नहीं लिखा। इल्ला मा कतबल्लाहु अलैना, ला ला ला, इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, हमारे लिए लिखा है। तो मुसीबत का लफ्ज उर्दू में हम बुरे कामों के लिए, जो बुरी चीज़ आपको आके लग जाए उसके लिए मुसीबत, अरबी में मुसीबा अच्छे और बुरे दोनों के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर इन वलमन सबर व ज़कर व गफर इन ذلك لمن عزم الأمور, देखें आप फ़र्ज़ करें ये होता रहता है, ये लोग कुरान की कॉपी को जला रहे हैं या ये रसूल सल्लम के कार्टून बना रहे हैं या कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, राइट, युरीदुना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, राइट। और फिर हमें आता है गुस्सा कि इसकी कोई जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस पर मैंने बहुत अर्सा पहले एक लेक्चर भी दिया था कि हम जिस किस तरह इस पर रिएक्ट करते हैं और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है और फिर किस तरह हम एक्चुअली जाने बगैर बगैर सही इल्म के हम उनका फ़ायदा करा देते हैं, क्योंकि उनकी उनका असल मकसद होता है कि किसी ना किसी तरह अपने ऊपर अटेंशन लाएँ, और उनको अटेंशन बाकी तो कोई देता नहीं, कौन देता है उन्हें सारी अटेंशन, हम देते हैं, हम देते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा जा रहा है, उनको शायर कहा जा रहा है, उन्हें कज़्ज़ाब कहा जा रहा है, और कुरान कहता है ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, जवाब में क्या करो, अरिद अनहुम, छोड़ दो उन्हें, तवल्ला अनहुम, पीठ दिखाओ उन्हें, बार बार कुरान ये कह रहा है ना। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन एक बात यहाँ पर जो समझने की इस मामले इस कॉन्टेक्स्ट में है वो ये है कि कभी कभार सब्र का तकाजा ये होता है कि आप कोई रिएक्शन ना दें, या तो इसलिए कि उस रिएक्शन का टाइम नहीं है, या हो सकता है कि अभी रिएक्शन की आपके पास सलाहियत नहीं है। जो मक्के में सहाबा के साथ ज्यादतियाँ हो रही थीं, उस वक्त वो जवाबी कार्रवाई कर भी नहीं सकते थे। वलमन सबर, तो वहाँ पर वस्बिर अला मा असाबक, लुकमान की आयत मक्के में आई है। लेकिन एक और सब्र का इम्तिहान है, वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि जिसने आपके साथ ज्यादती की वो एक ज़माने में ताकतवर था और आप कमज़ोर थे, लेकिन एक ज़माना आता है कि अब वो कमज़ोर हो गया है और आप ताकतवर हो गए, और अब वो आपके सामने है। अब वो जब आपके सामने है तो वो जो पहले का खाता था वो अब बैलेंस करना है, आगे से उसको जवाब देना है। उसने वो चार साल पहले जो थप्पड़ मारा था, अब आपको आपका टाइम आ गया कि मैं भी ज़रा स्कोर बराबर करूं। उस वक्त अपने आप को रोके रखना और उस वक्त बदला ना लेना, ये भी सब्र का इम्तिहान है कि नहीं? सब्र का बहुत बड़ा इम्तिहान है। और देखिए, अगर आपको आपके साथ ज्यादती की जा रही है और उसमें आपके पास कोई इक्तदार नहीं है, सब्र तो आप करोगे, लेकिन दो चॉइसेस ना, या सब्र करोगे या रोगे, उसके अलावा क्या कर लोगे? लेकिन अगर आपके हाथ में इख्तियार है और फिर भी आपने फैसला किया कि आप अपने आप को रोके रखेंगे और आप माफ़ करेंगे, ये कोई छोटा काम है ना? वला मन सबरा व गफारा, और जिसने सब्र किया और साथ ही माफ़ भी किया, ये तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला काम है। فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, इन आयात का ताल्लुक असल में बदले से है, बदले की हिकमत और बदले को समझना कुरान में। وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ, किसी के साथ जुल्म किया गया हो और वो अपनी मदद करने के लिए जवाबी कार्रवाई करे, तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। बाइबल का एक मुहावरा है, शायद आपको मालूम होगा, टर्न द अदर चीक, दूसरा गाल दिखा दो। कहने का मतलब क्या है? एक तरफ से थप्पड़ मारे तो कहें ये ज़्यादा लाल हो गया, इसको भी फिक्स कर दें, right? Turn the other cheek.
1: तो कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है
0: और आप उसके जवाब में अपने हक के लिए खड़े हो जाते हो, अपनी मदद करते हो या उसको रिटेलिएट करते हो, तो क्या आप पर मुजम्मत होगी?
1: नहीं. فَأُولَئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. आप उनके ऐसे लोगों के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया जा सकता जो जुल्म किए जाने के बाद जवाब दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ. केस तो उनके खिलाफ हो जो ज्यादती करते हैं, केस तो उनके खिलाफ हो. तो फिर तीन आपके पास पॉसिबिलिटी, तीन इम्कान आ गए. अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ, तो तीन इख्तियार है मेरे पास. एक इख्तियार है, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं उसको चार मारूंगा. लाजमन नहीं कहा कि माफ करो, लेकिन अगर माफ करने की इतनी हिम्मत है कि माफ कर सकते हो तो उसका इनाम क्या है कि अल्लाह ताला माफ करेगा. और इन आयात में जब कहा ना वला मन सबरा व गफरा فإن ذلك من عزم الأمور. إني آيات میں کہا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جس نے معاف کر دیا اور پھر رشتے کو دوبارہ صحیح بنا دیا, اصلح اصلاح کر لی. عام طور پر کوئی اچھا کام کرو تو اللہ اجر کا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے, یا کہتے ہیں کہ اس کو جنات ملیں گی, اس کو باغ ملیں گے, اس کو اگر ہمیں دریا ملیں گے, اس کو جنت کے پھل ملیں گے. کسی اجر کا ذکر ہے یا کسی مغفرت کا ذکر ہے. یہاں پر اس ایک معاف کرنے کی کے عمل کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ, یعنی بیان بھی نہیں کیا کیا اجر ہے. قرآن جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پورے مکمل پرفیکٹ بیان میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ انسانی زبان میں انسان اس اجر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے گا. تو اس کے لیے تعبیر یہی صحیح ہے کہ اس کا اجر

अगले 6 लेक्चर भी खराब हो जाएंगे और आपको डिप्रेशन हो जाएगी। तो आपकी आपका ध्यान आपका लिहाज करते हुए आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जाना। होता ऐसा कि नहीं? जो सही टीचर होता है ना, वो गूगल नहीं होता, उसमें जो भी एंटर करो उसका वो जवाब देना शुरू कर देगा, वरना सारी तालीम खराब हो जाएगी। कभी कभी टीचर को कहना पड़ता है इसका जवाब अभी नहीं, इस बारे में मैं तफासिल नहीं दूंगा। तो कुरान आपकी हर बात का जवाब नहीं देता। और आजकल मैंने नोटिस किया है, जो जिस किस्म के लोग सवाल पूछते हैं, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि जिस किस्म के लोग सवाल पूछते हैं उससे पता चल जाता है ज़हनियत क्या है। तो लोग अब कहते हैं कुरान में ये क्यों नहीं है, कुरान में वो क्यों नहीं है, कुरान में इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं, कुरान में उसकी, क्योंकि हमने कुरान को गूगल बना दिया ना। अब तो गूगल में तो मैं जो भी डालता हूँ उसका मुझे जवाब मिल जाता है। अब कुरान में मैं डाल रहा हूँ, मुझे उसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। कुरान में इसका जिक्र क्यों नहीं है, उसका जिक्र क्यों नहीं है? कुरान तालीम है। अगर आप किसी क्लास में जाते हो, PhD प्रोग्राम में जाते हो, किसी आला तालीम में जाते हो, क्लास में बैठते हो, इतनी मुश्किलों से आपको उसमें दाखिला मिला है, इतना दुनिया का सबसे अजीम प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है कोई, और फिर आप कहो कि उसने आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाया, और इस टेक्स्ट बुक में तो मेरे फेवरेट खानों के बारे में भी कुछ नहीं है, वेकेशंस के बारे में भी कुछ नहीं है। जो चीज़ आपके जहन में वो उस किताब में होनी है। आप यहाँ सीखने आए हो या अपनी ख्वाहिशात पूरी कराने आए हो? तो ये ज़हनियत हमें बदलनी होगी कुरान के बारे में, कि हम किस किस्म के सवालात कुरान के लिए लाते हैं। अच्छा खैर, ये इसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा, ये दिमाग लड़ाने वाली ताबीर है। और इसके बारे में मैंने जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में आपको कुछ बताया था ना, कि अगर इस तरह कहा होता तो क्या कमी रह जाती, उस तरह कहा होता तो क्या कमी रह जाती। मेरे मैं जिनके काम से मैं बहुत मुतासर हूँ, कुछ उलमा हैं दुनिया में जिन्होंने कुरान की बहुत खिदमत की है तारीख में भी और आज भी, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे, उनके काम को कबूल करे। उनमें से एक शख्सियत हैं डॉक्टर फ़ादिल सालिह अस्सामिर्राई, सामिर्रा से उनका ताल्लुक़ है, इराक़ में होते हैं। और उनके एक स्टूडेंट जो हैं डॉक्टर मुसन्ना, वो मेरे दोस्त भी हैं, वो भी इराक़ में, वो भी उनसे भी बातचीत मेरी होती रहती है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं कुरान के मौजज़े पर। मैं एक दो मिनट लूँगा इनके बारे में कुछ आपको बात बताने के लिए, क्योंकि बहुत ही अजीम शख्सियत है। ये थे इराक़ में, और इराक़ में जो बाथ पार्टी है ना, सियासी पार्टी 70s में 80s में, इस तरह वो लोग सारे थे कम्युनिस्ट, और ज़्यादातर वो एथीस्ट भी थे। और इराक़ में एक तरफ तो इस्लाम था और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सेकुलरिज्म था। और इस ज़माने में इनको इनकी जब तालीम हुई है तो ये इनका एक बहुत फ़लसफ़ी किस्म का दिमाग था, और ये इनको अरबी अदब से बहुत मोहब्बत थी। इस तरह लोग होते हैं जिनका दीनी मिजाज हो ना हो लेकिन उनको उर्दू अदब से मोहब्बत है, ठीक है? तो इसी तरह इनको अरबी अदब से, अपनी तारीख से, अपनी तुरास से बहुत मोहब्बत थी। इन्होंने यानी बहुत आला तालीम हासिल की अरबी अदब में, PhD वगैरह की, यहाँ तक कि ये बगदाद में तमाम स्कूल्स के जो अरबी एजुकेशन है उसके वो इंचार्ज थे, और PhD प्रोग्राम में अरबी भी पढ़ा रहे थे। अपने बारे में लिखते हैं कि मैं जवानी के दौर में, मेरे जहन में एक ख्याल आया, अजान हो रही है इराक़ में, और मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं क्यों जाऊं नमाज़ पढ़ने, क्या मिलेगा मुझे अगर मैं इस मज़हब को कबूल करता हूं, मानता हूं। अभी मेरे पास नौजवानी है, आज़ादी है, इख्तियार है, और मैं अगर इस मज़हब को कबूल करता हूं तो मैं अपनी आज़ादी छोड़ रहा हूं, अपने वक्त को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर रहा, और अपने ऊपर कैदें डाल रहा हूं। तो ये मैं अपने ऊपर ये बोझ क्यों डालूं, क्या ज़रूरत है मुझे ये बात कबूल करने की, इससे मुझे क्या मिलेगा सिवाय और बोझ के, मुझे क्या मिलना है इससे? ये सवाल था इस शख्स के जहन में। इन्होंने जब ये जहनीत इनकी बढ़ी तो इन्होंने क्या किया कि अरबी तो पढ़ी, कुरान पढ़ने से इनकार कर दिया। शेर पढ़ना है, तारीखी शेर और तहजीब के शेर, तमाम शेर, कुरान नहीं पढ़ना, ना ये मेरे लायक नहीं, इस तरह का एटीट्यूड मेरे लायक नहीं है ये। PhD प्रोग्राम में थे तो किसी ने इनको चैलेंज किया, एक तालिब इल्म था इनका, इन्होंने इनको चैलेंज किया, कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप कुरान पे तनकीद लिखते हैं, अदबी आपकी महारत है, आप अरबी के एक्सपर्ट हैं, आप ऐसा करें, अगर आपको इतना ही एतमाद है अपनी अरबियत पर, तो आप कुरान का मुताला करके कुरान पर बाकायदा क्रिटिसिज्म लिखें। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए 50s और 60s में खासकर मिस्र में कुरान पर बहुत सारी तनकीद भी लिखी गई थी सेकुलरिज्म के दिनों में। तो इन्होंने चैलेंज को कबूल किया कि मैं लिखूंगा जी। इन्होंने कुरान का बहुत गहराई से मुताला शुरू किया।
पहली किताब शाया करते हैं उसका नाम है

0: दो ताबीरात मैंने लिखी हैं स्क्रीन पर, ला खौफुन अलैहिम, उन पर खौफ नहीं होगा। थोड़ी अजीब उर्दू है जानबूझकर, उन पर खौफ नहीं होगा। और दूसरी जरा आम समझने वाली उर्दू है, वो खौफ नहीं करते या वो खौफ नहीं करेंगे। कुरान ने ये क्यों नहीं कह दिया दोनों अफ़ाल इस्तेमाल कर लेता? अगर कह लेता ला यखाफून वला हुम यहज़नून, ना वो डरेंगे ना वो गम करेंगे। बात तो तकरीबन एक ही होती है एक दूसरे पहलू से, इसका फ़र्क भी बड़ा अजीब है। इसको समझाने के लिए थोड़ी मुझे मिसाल देनी पड़ेगी। छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसको अभी किस चीज़ से डरना चाहिए और किस चीज़ से नहीं डरना चाहिए उसकी, उसको अभी इतनी अकल नहीं है। उसके पास आ गया एक सांप बच्चे के पास, और वो बच्चा उसको देख के हंस रहा है। उसके बारे में क्या कहा जाएगा? उसके बारे में कहा जाएगा उसको खौफ नहीं है, यही कहा जाएगा ना कि उस बच्चे को खौफ नहीं है, लेकिन उस पर खौफ है। यानी उस पर किसको खौफ है? वालदेन को, किसी और को, यानी उस पर खौफ है की ताबीर होती है कि वो वाकई खतरे में है। खौफ के लायक कोई चीज उस पर वाकई होने वाली है लेकिन उसको उसका एहसास नहीं है। असल चीज क्या है अगर, और उसका एक और मिसाल समझ ले फिर ये बात वाजे हो जाएगी। वही बच्चा है, अब सांप नहीं है, अब उसके सामने लाके एक टेडी बेयर आपने रख दिया, खिलौना रख दिया, डर डर के रो रो के उसका बुरा हाल खिलौना देख के, अब क्या कहेंगे उस बच्चे के बारे में कि उसको खौफ है? वाकई में उसको खौफ तो है, खौफ तो उसको है, खौफ कर रहा है, लेकिन हकीकत में उस पर कोई खौफ नहीं है, यानी उस पर कोई खतरा नहीं है। ये दो ताबीरें बारीक सी हैं, इसको समझने की जरूरत है। पहले मैं अगर कहूं कि वो खौफ करता है तो उसके जज्बात के बारे में बात हो रही है, मैं खौफ करता है उसकी फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है। अगर मैं कहूं उस पर खौफ है तो जो खतरा उस पर आने वाला है उसके बारे में बात हो रही है। तो एक है जज्बात और एक है हकीकत। हकीकत में उस पर कोई खौफ करने वाली चीज है। अजीब कुरान की ताबीर है, अहले ईमान के बारे में कहा यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार, उस दिन वो खौफ करेंगे, उस दिन का खौफ करते हैं। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़म्तरीरा, हम अपने रब से एक बहुत ही उदास करने वाले दिन का खौफ करते हैं। क़यामत के दिन के बारे में क्या अहले ईमान खौफ का जज्बा रखते हैं? हाँ, बल्कि इसका भी इनकार नहीं किया जा रहा कि उस दिन जब क़यामत शुरू होगी तो अहले ईमान भी खौफ ज़दा होंगे, खौफ फील तो करेंगे, खौफ का एहसास तो होगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से इस आयत में तसल्ली है, खौफ तो तुम फील करोगे लेकिन हकीकत में तुम्हारे ऊपर खौफ नहीं होगा, यानी तुम किसी वाकई हकीकी खतरे में नहीं होगे। सुभानअल्लाह, जैसे बच्चा खिलौने को देख के डर तो गया लेकिन हकीकत में उस पर खौफ नहीं है। ला खौफुन अलैहिम, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ला खौफुन अलैहिम। अच्छा, आगे ला खौफुन अलैहिम वला हुज़्नुन अलैहिम, अगर ये कहा होता ना उन पर खौफ होगा और ना उन पर उदासी होगी, अगर उसी तरह का उसलूब दोनों दफ़ा इस्तेमाल कर लिया होता, एक ही जैसी ताबीर इस्तेमाल कर ली होती, ला खौफुन अलैहिम वला हुज़्नुन अलैहिम या ला खौफुन अलैहिम वला हुज़्न, क्या फ़र्क पड़ जाता? इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँ उस पर उदासी नहीं है, किसी को जेल में डाला जा रहा है और कहूँ तुम्हारे लिए कोई रो नहीं रहा, तुम्हारे ऊपर किसी को उदासी नहीं है, वो कोई रोए ना रोए जेल तो वो फिर भी जा रहा है, इसका इस कलाम का कोई फ़ायदा ना होता, इसमें कोई तासीर ना होती। फिर ला हुम यहज़नून, ये तो मैंने पहले बता दिया तरतीब के बारे में। अच्छा, ये समझ लें अब, ला यहज़नून वो गम नहीं करेंगे, ला लेकिन कुरान ने ला यहज़नून नहीं कहा, ला हुम यहज़नून। मैंने क्या लिखा यहाँ? वो है जो गम नहीं करेंगे। इसको ज़रा एक मिनट लगेगा समझाने में, मुझे मिसाल देता हूँ दोबारा आपको। अगर मैं कहूँ कि बात ना करें, कोई बात कर रहे मेरे को बात ना करें, और वो जवाब में कहें मैं थोड़ी हूं जो बात कर रही हूं, मैं थोड़ी हूं, मैं वो नहीं हूं जो बात कर रही हूं, किस बात की तरफ इशारा है? ये बात कर रही, अगर वो कहे मैं बात नहीं कर रही, मैं बात नहीं कर रही, तो अपने बारे में इनकार है। और अगर कहे मैं वो थोड़ी हूं जो बात कर रही हूं, तो ना सिर्फ अपना इनकार है लेकिन दूसरे की तरफ इशारा भी है। समझ में आ गई बात? ये जो हम का इजाफा है ना, इससे सिर्फ अपना इनकार नहीं होता, किसी दूसरे की तरफ इशारा होता है, किसी दूसरे की तरफ इशारा। अगर कहें ला यहज़नून, वो हम नहीं करते, ला हम यहज़नून वो थोड़ी है जो हम करते हैं, वो थोड़ी है जो हम करेंगे। यानी यहां पर ना सिर्फ अहले ईमान के गम की नफी की गई, किसी और के गम की तरफ इशारा भी कर दिया। किसकी तरफ? अहले कुफर की तरफ, उनके गम की तरफ इशारा भी हो गया। ये असल में खतरे में नहीं है, इन पर असल में कोई खतरा नहीं होगा, ला खौफुन अलैहिम, और ये थोड़ी है जो गम करेंगे, बल्कि और होंगे जो गम करेंगे। ला हुम यहज़नून ला अलैहिम खौफ, अगर ये कहा होता ला अलैहिम खौफ, जिस तरह कहा है ला हुम यहज़नून, हुम पहले आ गया ना, तो अगर ये कहा होता ला अलैहिम खौफ, ये थोड़ी है जिन पर खतरा होगा, इन पर खौफ होगा, ये थोड़ी है जिन पर खौफ होगा। जिस तरह अभी मैंने पहले कहा था किसी और की तरफ इशारा, तो अगर इस तरह कहा होता शुरू में, तो इशारा होता इन पर थोड़ी खौफ होगा, किसी और पर खौफ होगा। वो बात भी गलत हो जाती, क्योंकि जो भी और खतरे में है उस पर खौफ कौन करेगा? किसको फिक्र होगी काफिर की कि वो उस पर खौफ करे? जी तो वो बात की तुक ना बनती। अच्छा चलें, ये थोड़ी सी बातें हो गई ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून पे। एक आखिरी बात इसमें मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जो नफ़ी होती है ना अरबी में ला के साथ, ला के साथ कभी आप देखोगे कि उसमें तनवीन आती है खौफुन, खौफुन, और कभी कभी ज़बर आती है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, हम ये नहीं कहते ला इलाहुन इल्लल्लाह, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इकराहुन फिद्दीन या ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन, ला खलाकलहुम फिल आखिरा, ठीक है। लेकिन कभी कभार ला के बाद तनवीन आती है, ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफाअतुन। इन दोनों में भी एक बारीक सा फर्क है, एक होता है बिल्कुल हरगिज कभी भी नहीं, और एक होता है बिलउमूम नहीं, बिलउमूम नहीं। एक है बिल्कुल हरगिज हो ही नहीं सकता, जब वो बिल्कुल हरगिज हो ही नहीं सकता वाला होता है ना, तो उसमें आती है जबर, इसको कहते हैं ला नाफिया लिल जिन्स। जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मायना ये भी है कि इलाह होने का कोई इम्कान हरगिज है ही नहीं, हो ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह के। ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन के मामले में कोई जबर किसी के साथ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इम्कान नहीं है। वो कैसे? ये बिल्कुल इम्कान वाली बात कहाँ से निकलती है? उस जबर से। और अगर आप उस पर तनवीन डाल दें, तनवीन डाल दें, तो फिर उसमें थोड़ा सा इम्कान रह जाता है। तो ला खौफा में कोई इम्कान ना रहे, ला खौफुन में थोड़ा सा इम्कान रह जाता है। अब देखना ये आयत सुनते हैं, कुरान की एक बड़ी अजीम आयत है, ला बैउन फीही, क़यामत के दिन उस दिन कोई फरोख्त नहीं होगी, कोई बै नहीं होगी, वला खुल्लतुन उस दिन कोई दोस्ती नहीं होगी, वला शफ़ातुन उस दिन कोई शफ़ात नहीं होगी। तीन का इनकार है क़यामत के दिन, बैउन खुल्लतुन शफ़ातुन, ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफ़ातुन। ज़बर सुनी के तनवीन सुनी, तनवीन के बारे में क्या बताया था? कोई बै नहीं होगी मोस्टली, इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बि अन्न लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने तो खरीद लिया अहले ईमान से उनके अमवाल और उनके नफ्स जन्नत के इवज। खरीदो फरोख्त का जिक्र कुरान में भी है, फस्तबशिरू बि बैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही, तुम खुशखबर हो जाओ उस फरोख्त के मामले में जो अभी तुमने मुकम्मल की है।
1: तो एक बै तो है
0: लेकिन अक्सरियत के लिए वो बै नहीं है।
1: अच्छा
0: फिर कहा ला खुल्लतुन, उस दिन कोई दोस्ती नहीं होगी।
1: थोड़ी सी होगी। अना खिल्ला अउलिया अल्लाह, अल्लाह ताला के दोस्त जिनको अल्लाह ताला अपने अपने साए में लेगा उनका थोड़ा सा इम्कान रह गया। और बड़ी प्यारी बात, वला शफातुन, उस दिन शफात नहीं होगी।
0: कुछ होगी,
1: कुछ तो होगी, वह है हमारे नबी की शफात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
0: तो एक ज़बर से भी और एक हल्की सी ज़बर और एक पेश से भी तनवीन से भी कुरान के फहम में कितना फ़र्क आ जाता है। और ये चीज़ें क्योंकि हम तर्जुमे में कैप्चर नहीं करते ना, तो उससे भी मेरे नज़दीक लोग तर्जुमा आसान तर्जुमा पढ़ते हैं, समझते हैं चले अब कुरान समझ आ गया, तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी आ जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ें बारीक तरीके से कुरान ने कही हैं, ज़बान का इख्तियार अल्लाह ने एक ख़ास मकसद के लिए किया था। ये ज़बान अरबी ज़बान बहुत साइंटिफिक है, इसमें एक एक बारीक नाजुक सी प्रिसीजन है, और इस तरह की बारीक प्रिसीजन जो है वो और ज़बानों में नहीं है इस तरह से। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह और ज़बानें सीखने का मौका मिला है, मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी किसी भी ज़बान में जो अरबी ज़बान में है, जो जो जो जो जो नज़ाकत अरबी ज़बान में है, जो दिक्कत अरबी ज़बान में है। तो इसलिए तर्जुमा अच्छी चीज़ है एक सतही लेवल पर बात समझने के लिए, लेकिन कुरान का जो असल मौजज़ा है ना और जो उसका बारीक कलाम है उसको समझने के लिए अरबी की अहमियत कभी भी ज़ाया नहीं होगी। तो इसलिए आप सबको नियत करनी चाहिए कि शुरू कहीं से भी करें, आहिस्ता आहिस्ता भी करें, लेकिन इंशाल्लाह अरबी के तालिब इल्म हम सबको बनना चाहिए किसी न किसी हद तक। और ताला वो रास्ते खोलता रहता है। अगर आपकी नीयत है कि मैंने अल्लाह को याद करना है और अल्लाह के कलाम को बेहतर समझना है, तो आप चाहे 70 साल के हों, चाहे 90 साल के हों, चाहे 7 साल के हों, अरबी आपके लिए अल्लाह आसान करेगा, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कम उम्री में जो बात उन्होंने कही थी उसको रिकॉर्ड किया है। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीनी वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्कीनी व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीनी वल्लज़ी युमीतुनी थुम्मा युहयीनी, जिसने मुझे बनाया और वही है जो मुझे हिदायत देता है, वही है जो मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही है जो मुझे शिफा देता है, और वही है जो मुझे मौत देगा और फिर हयात देगा। इन आयात में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो नोट करने वाली। फ़ैज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीनी, हर फ़ेल की नस्बत अल्लाह ताला की तरफ है। नोट करें, बनाया, हिदायत दी, खिलाया, पिलाया, शिफा दी, मौत दी, हयात दी, एक फ़ेल है जिसकी नस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं है। ऐदा मरित तू, जब मैं बीमार हो जाऊं, जब मैं बीमार हो जाऊं, ये नहीं कहा जब मुझे बीमार किया तो मुझे शफा दे। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन एक उसलूब कलाम में एक अदब होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के बारे में मर्ज को उनकी नस्बत मर्ज से नहीं की, अपने ऊपर कर ली। मैं बीमार हो जाता हूँ, शिफा वो देता है। वैदा मरित तो फहुआ यशफीनी। दूसरी चीज़ यहाँ नोट करें दोबारा, जो अफ़ाल हैं अल्लाह ताला के वो क्या हैं? बनाया, हिदायत दी, खिलाया पिलाया, शिफा दी, मौत दी, जिंदगी दी, ये तमाम अल्लाह ताला के करने के काम हैं। और इनमें से बहुत सारे अफ़ाल ऐसे हैं जो कोई भी अल्लाह पर ईमान लाता है ना तो उसका इन चीज़ों पर ईमान होता है कि मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, बनाने वाला तो खुदा है, ठीक है। लेकिन कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको याद रखने की। अल्लाह ने मुझे बनाया, ये मालूमात आपके लिए, ये बात मालूम होना मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका रोज़ याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, कभी कोई हादसा होता है, कोई वाकया होता है तो आपको इस बात को ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ये आपके जहन के पीछे रहती है, बैकग्राउंड में रहती है, रहती तो है लेकिन बैकग्राउंड में रहती है। लेकिन कुछ अल्लाह ताला के अफ़ाल ऐसे हैं जिसका असल में हमारे ईमान पर रोज़ बहुत ज़्यादा असर होता है, और वो है हिदायत, कि हिदायत देने वाला अल्लाह है, यानी मैं रोज़ अल्लाह से हिदायत तलब कर रहा हूँ, اس کے پاس جا رہا ہوں. اسی طرح مجھے یاد رہے ہر روز کہ جو میں رزق میرے پاس آ رہا ہے وہ میری وجہ سے نہیں آ رہا, وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا جو اللہ نہیں کرنے دے گا, میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جو اللہ نہیں, جو میرا فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے, میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو ہوا کا لفظ ہے نا, وہ ان چیزوں کے لیے آیا ہے جو روز ہمیں آسانی سے بھول جاتی ہیں. جو بڑی بڑی باتیں خدا کے بارے میں ہیں جو سب مانتے ہیں, بنانے والا وہ ہے, زندگی دینے والا وہ ہے, موت دینے والا وہ ہے, وہاں کہا ہے خلقنی یمیتنی یحیینی, لیکن ہدایت کے بارے میں یہ نہیں کہا یہدینی, کہا فہوا, وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے. اور میں نے پچھلے سیشن میں آپ سے کہا تھا نا کہ الاثبات علی غیر الفاعل, اگر میں کہوں میں تھوڑی ہوں جو بات کر رہی تھی, کس کی طرف اشارہ ہے؟ کسی اور کی طرف. اگر کہیں نا وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے, اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کوئی اور تھوڑی. یعنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی اور آپ کو ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے خلاف جا رہی ہوتی ہے, اور آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے, کوئی اور تھوڑی. اور اسی طرح ہوا یطعمونی و یسقینی, وہی تو ہے جو کھلاتا ہے. یعنی آپ کو کبھی لگے کہ آپ اگر حق بات کر دو گے تو آپ کی جاب چلی جائے گی, آپ صحیح بات کرو گے تو بزنس میں نقصان ہو جائے گا, اگر میں ان کی مرضی کے خلاف یا ان کا موڈ خراب ہو گیا تو پھر میری تو شامت آ جائے گی. تو کیا بات بھول جاتا ہے انسان کہ کھلانے والا میرا باس نہیں ہے, کھلانے والا یہ پروفیسر نہیں ہے, کھلانے والے یہ نہیں ہے, اصل میں کھلانے والا اور پلانے والا میرا رب ہے. تو وہاں مزید اہتمام کیا, وہی تو ہے جو کھلاتا پلاتا ہے, الذی ہوا یطعمونی و یسقینی. تو ان چھوٹی چھوٹی ضمائر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سے افعال پر خاص زور دیا جا رہا ہے اس تمام لسٹ میں. ٹھیک ہے, اوکے, ایزی ایگزامپل. اوف, یہ تھوڑی ڈرونی آیت ہے.
2: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن میں, میرے کم مطالعے کے حساب سے قرآن میں عذاب کی کم سے کم سے کم شکل یہ آیت ہے. اس سے کم عذاب کی کوئی تعبیر مجھے نہیں ملتی قرآن میں, شاید ہو, میرے علم میں نہیں ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اس سے کم تو ممکن نہیں ہے. اور یہ جہنم کے اندر بھی نہیں, ابھی جہنم سے باہر کی بات ہے. یعنی اس سے کم تعبیر میرے نزدیک ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک سین بنایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا, جس طرح کہتے ہیں نا خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو وقت کا بھی تعلق عذاب سے ہوتا ہے. لیکن اس آیت میں کتنا وقت گزر رہا ہے, نہ ہونے کے برابر.
3: Hadith 32. Narrated Abu Hurairah, the Prophet, peace and blessings be upon him, said, "Religion is very easy, and whoever overburdens himself in his religion will not be able to continue in that way. So you should not be extremists, but try to be near to perfection and receive the good tidings that you will be rewarded and gain strength by worshipping in the mornings, the afternoons, and during the last hours of the nights." Hadith 33. Narrated Al-Bara bin Azib, when the Prophet, peace and blessings be upon him, came to Medina, he stayed first with his grandfathers or maternal uncles from Ansar. He offered his prayers facing Baitul Maqdis, Jerusalem, for 16 or 17 months, but he wished that he could pray facing the Kaaba, at Makkah. The first prayer which he offered facing the Kaaba was the Usr prayer in the company of some people. Then one of those who had offered that prayer with him came out and passed by some people in a mosque who were bowing during their prayers, facing Jerusalem. He said addressing them, "By Allah, I testify that I have prayed with Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, facing Makkah, Kaaba." Hearing that, those people changed their direction towards the Kaaba immediately. Jews and the people of the scriptures used to be pleased to see the Prophet, peace and blessings be upon him, facing Jerusalem in prayers, but when he changed his direction towards the Kaaba, during the prayers, they disapproved of it. Al-Bara added, before we changed our direction towards the Kaaba, Makkah, in prayers, some Muslims had died or had been killed and we did not know what to say about them, regarding their prayers. Allah then revealed, and Allah would never make your faith, prayers, to be lost, that is, the prayers of those Muslims were valid. Surah 2, Ayah 143. Hadith 34. Narrated Abu Sa'id al-Khudri, Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, if a person embraces Islam sincerely, then Allah shall forgive all his past sins, and after that starts the settlement of accounts, the reward of his good deeds will be 10 times to 700 times for each good deed, and one evil deed will be recorded as it is, unless Allah forgives it. Hadith 35. Narrated Abu Hurairah, Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, if any one of you improves, follows strictly, his Islamic religion, then his good deeds will be rewarded 10 times to 700 times for each good deed and a bad deed will be recorded as it is. Hadith 36. Narrated Aisha, once the Prophet, peace and blessings be upon him, came while a woman was sitting with me. He said, who is she? I replied, she is so and so, and told him about her, excessive, praying. He said disapprovingly, do good deeds which is within your capacity, without being overtaxed, as Allah does not get tired of giving rewards, but, surely, you will get tired, and the best deed, act of worship, in the sight of Allah is that which is done regularly. Hadith 37. Narrated Anas, the Prophet, peace and blessings be upon him, said, whoever said, none has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good, faith, equal to the weight of a barley grain will be taken out of hell. And whoever said, none has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good, faith, equal to the weight of a wheat grain will be taken out of hell. And whoever said, none has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good, faith, equal to the weight of an atom will be taken out of hell. Hadith 38. Narrated Umar bin al-Khattab, once a Jew said to me, O the chief of believers! There is a verse in your holy book which is read by all of you, Muslims, and had it been revealed to us, we would have taken that day, on which it was revealed, as a day of celebration. Umar bin al-Khattab asked, which is that verse? The Jew replied, this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Surah 5, Ayah 3. Umar replied, no doubt, we know when and where this verse was revealed to the Prophet. It was Friday and the Prophet, peace and blessings be upon him, was standing at Arafat, that is, the day of Hajj. Hadith 39. Narrated Talha bin Ubaidullah, a man from Najd with unkempt hair came to Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, and we heard his loud voice but could not understand what he was saying, till he came near and then we came to know that he was asking about Islam. Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, you have to offer prayers perfectly 5 times in a day and night, 24 hours. The man asked, is there any more praying? Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, no, but if you want to offer the nawafil prayers, you can. Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, further said to him, you have to observe fasts during the month of Ramadan. The man asked, is there any more fasting? Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, no, but if you want to observe the nawafil fasts, you can. Then Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, further said to him, you have to pay the zakat, obligatory charity. The man asked, is there anything other than the zakat for me to pay? Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, no, unless you want to give alms of your own. And then that man retreated saying, by Allah, I will neither do less nor more than this. Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, if what he said is true, then he will be successful, that is, he will be granted paradise.
4: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire FM. Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
8: The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, ihris ala ma yanfa'uk. Work hard towards what you believe is beneficial for you. Then leave it to Allah subhanahu wa ta'ala.
9: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
10: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
11: اعتدال حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی آئیے اور سنیے حق کی آواز میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد سناؤں گا آپ کو پروگرام آواز حق میں حق کی آواز ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
13: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
4: Catch a creative vibe on the Urban Cube with Sister Shamiza.
14: Good morning and assalamu alaikum. It is 10 o'clock, 27th of July, and you're listening to me, Shamiza, on Inspire FM 105.1 FM. It's an absolute pleasure to be in your company this morning. Hope you're having a great start to the week. It is Monday, and as always, we are having creative conversations with trailblazing individuals on the Urban Cube. It's a show that celebrates Muslim arts and lifestyle And we always have interesting guests who will hopefully inspire, motivate you and get involved with the projects and experiences that they will be sharing on the show today. Now, the show does go out to Luton surrounding areas, Peterborough Salaam Radio and Sheffield's Link FM. You can actually catch the conversation live on our Facebook page. That's Inspiring FM Facebook page. And you'll get to see who's in the studio as well. Please leave your comments or any questions that you have on the Facebook page. Alternatively, we have WhatsApp as well. So if you'd like to leave any questions, you can do so on 077-794-81822. And I have to always try and remember what that number is. And I hope you didn't see me or hear me turn around to look for the number. Now, it is the summer holidays. And if you are looking for something to do, then may I suggest why not spend an afternoon or an evening watching a film that's been made right here in Luton? And it celebrates the people and communities that make our town so special. Now, the film, I might suggest, is Ish, which is a beautifully observed coming-of-age story set and filmed in Luton's South Asian and Middle Eastern communities. It follows two 12-year-old best friends, Ish and Maram, as they navigate childhood friendship, loss and identity in a world that's becoming increasingly complicated around them. When a police stop and search changes everything, the boys are forced to make sense of their experiences and the men they're becoming. Directed by acclaimed artist and filmmaker Imran Peratta, who co-wrote the film with Enda Walsh, Ish offers something we don't often see on our screens: Muslim boys at the centre of the story. It's a film that portrays them with warmth, complexity and authenticity, laughing, playing, dreaming and growing up. At its heart, Ish is about friendship and belonging, but it's also an important reminder that representation matters and that every community deserves to see its stories told. The film has received critical acclaim on the festival circuit and will be screening at Cineworld, Luton, and in cinemas across the UK and Ireland from the 31st of July. Joining me today are the actual cast of the film, live in the studio, folks. You can actually see them on camera. And I also have in a corner in the studio the producer of the film, Dheeraj Mahe. And the actors, I have to, you know, point out, they are all from Luton. And it's so exciting to be actually having them joining me live on the Urban Cube today, just before the national screening that is coming to the cinemas on Friday. In the studio, we are going to have all four of the cast, inshallah, but we have two in the studio. We have Farhan and Hasnain, who play fabulous roles in the film, and we'll be catching up with them very, very shortly. As I've mentioned, if you'd like to leave any comments or have any questions, please feel free to do so. They are with me all the way up to 11 o'clock. Now, welcome. Thank you so much, boys, for joining me on the show, The Urban Cube, this morning. And I'm going to get you to introduce yourselves individually, who you are and who you play.
15: Assalamu alaikum, everyone. My name is Farhan and I play Ish in Ish.
14: Ooh, the main character. And next to you is...
16: Right, first of all, I just want to say thanks so much for having us. My name is Hasnain Shah and I play Shaden.
14: Wonderful. Thank you so much. And we are waiting for the other two youngsters that play on the show as well, the film. Now, what are their names and what roles do they play?
16: Well, first of all, we have Yahya, who is the other lead character. He plays a character called Maram, who has a massive significance to the story. We're also waiting for Aman and Ishaq, who play Afzal and Zaki. We're sort of, me, Aman and Ishaq are sort of in a big group, and we sort of influence the two lead characters.
14: Oh, influence the lead character. Now, the lead character, Farhan, who plays Ish, how did your journey come about being part of the film?
17: Oh, I've said this story a million times and I love saying it. So, actually came to my high school. So they went to all the high schools, all the clubs around Luton, because Diraj, correct me if I'm wrong, Imran wanted like a proper Lutonian boy who knows the area well, so that it's as natural as it can be. And when they came, first you just saw Lara, who was our casting director, say, she gave a little video about what it is that she does. And all I got from it was that I'll be skipping lessons. So I was like, yeah, sign me up. Yeah. And after a while, I just got deeper and deeper and deeper into it. I was like, wait, I'm a bit good at this. And it got to the last stage where it was me, Yahya, who plays Maram, and two other boys. So I was like to Yahya, oh, because this last stage, it was like an improvisation stage where two boys would go in together out of the four of us. So there would be three pairs. So two boys would go in together and they would do an improv together to see their chemistry.
14: Okay, so I'm going to ask you to explain what is improvisation for those people who are not familiar with these drama terms, acting terms.
17: Okay, so improvisation is basically, it's just going off the top of your head and making something up on the spot. So if you are in a certain situation and there's not been a script given to you, you have to make the words up on the spot in your mind and just act as best as you can. So that was the task that the boys were given. And it was me and Yahya. We were just sitting together. I was like to him, when you're with the other boys, act as terribly as you can. But when you're with me, let's do the best we can. So we threw the other two boys under the bus so that we'd be able to get the role. And it worked.
14: And it worked.
17: And it worked.
14: I have a feeling that you've got a little bit of directing in you. It seems like, you know, you can instruct.
17: I would love to be a director one day. I would love it. I'm writing a book, which I want to get published. And one day, inshallah, I'd be able to direct it. Or maybe even act in it.
14: Fabulous. I want to ask your experience, Hasnain. Farhan's given us like a whole film script of his directing debut as well. What about yourself? What was the process like for you?
16: Unfortunately, guys, I do not have a story like Mr. Farhan over here. For me, it was, honestly, they'd come to my school and I kind of saw it as a thing where it was like, listen, I can go and do this. Let's just try it out. I'm going to be missing lesson anyways. Why? Look, you know what I mean? Like, nothing can go wrong. I ended up going there. Everyone was super welcoming. I ended up talking to my dance teacher at the time. I need to give a special thanks to her. She kind of put me onto the idea and I was like, you know what? Let's just go for it. And I ended up actually doing well. I had auditioned for it before. There was like an online casting. I remember auditioning for it and I got no reply. And I was like, you guys are going to see me one way or another. Like, I'm going to be there. So I ended up showing up to the casting in Chorney. It was me and about 20 other boys. I remember being in that room looking around and I was like, okay, you know what? Let's take a little step back here. You know what I mean? Like, am I really cut out for it? But I ended up talking to Diraj. I ended up saying what I wanted to say. I did what I had to do. And ultimately, here we are now.
14: And here you are, and the rest is history. I love the fact that both of you mentioned one of the reasons of kind of participating was the fact you're missing lessons.
17: 100%.
16: Literally. Some of the lessons that we had to do, man, it was, I would much rather go out. There's so many things that I could say that I would do, but for the sake of getting monetized, we're going to...
14: Oh, okay. Folks, if you've just joined the show, you are listening to Misha Meiser. This is the Urban Cube, 9:09, and I am in some great company this morning. I'm joined by two remarkable young men who are going to be featured, who are featured in an upcoming film, which is being released on Friday, called Ish. And we have the actors playing these roles in the film, especially the lead actor, who is Farhan, joining me in the studio. Now, have you guys had any previous acting experience, or were you ever inclined to go down this path? Starting off, I'm going to start with Hasnain. I'd love to hear your thoughts.
16: The concept of acting or any sort of showbiz was a completely foreign, space. I am South Asian. I'm Kashmiri, for those of you that don't know. And in our culture, it is like, it is not a route that is explored, despite the strong roots in things like Bollywood. But mm-hmm. I'm an MMA fighter as well, for those of you that don't know. And I always kind of saw them as like two contrasting things. Like, you're going to beat people up and then you're going to go on set and make movies. Like, it doesn't really add up. But I was blessed to meet people who kind of showed me that, you know what, maybe it isn't what you think it is. And they kind of rewired my way of thinking about it, like Diraj, Imran, even the other castmates. It was honestly such a memorable and such a fun process that I was like, I need to do this again. And that is what I want to do.
14: Inshallah.
16: Sure.
18: Inshallah.
14: And Quran.
18: What do you mean by acting? Because I've acted out of a lot of situations. I've acted in to get out of school. I've done a lot of acting before. I'll tell you that for a fact. But just as Hasnain said, we never would have ever thought about it. Because number one, in being brought up in a South Asian community, we were always taught that it's either a doctor, a lawyer, a scientist, something like that. But then after getting this opportunity and doing it, I've done a lot. I've like thought to myself a lot. And me as a person, I feel like I want to help break these barriers down and allow other kids to achieve the dreams that they want to achieve. Specifically, I want to go into youth work because there are kids out there who need the help, especially like neurodiverse kids, kids who struggle in the educational system. I want to help these kids because these kids are our future. Like, even us, he's an MMA fighter, an actor, he's doing so much for himself. Like, kids like us who have these creative mindsets, we're going to be the future. We're the ones that are going to change the world.
14: Absolutely. Oh, my goodness. You're so young and you have such wisdom behind you. And where does this come from? Who inspires you? And have you seen role models in your life that you've looked up to?
18: For me, it's mainly my dad. My dad, he went through a lot when he was a child. Now he worked hard to move to England, to come to Luton, build a house, be stable enough to start a family. So everything, alhamdulillah for everything, because my dad's the reason why I'm here today. And also another one is my brother. He's very money-minded. Like, he works hard for everything. And just seeing my dad and my brother always working hard, doing the things they do best, it's motivation to me.
14: So wonderful to hear. And what about you, Hasnain?
16: Of course, my family and everybody, but like I said before, I'm an MMA fighter. My martial arts coach, Faisal Malik, he has taught me to be relentless in pursuit of everything and to just be a good human being, help people where you can. And I think that those qualities are similar to a lot of what is displayed in Ish. It is about kind of coming into your own a bit. And I feel like even watching the film, like, Diraj, Imran, those guys are definitely people that I look up to. A little bit of a rogue one, somebody that I don't know personally, but Riz Ahmed, he is a brown actor. I mean, he's smashing.